ये आकाशवाणी सागर है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में यानी सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए समाचारों के लिए हम कुछ पल प्रतीक्षा करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य

0: जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाज़ों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 6:05 हुए हैं। समय अर्चना का है, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ।

0: अभी श्रोता भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। जैसा कि आप जानते ही हैं, सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। कुछ पुराने फिल्मी गीतों का आनंद दीजिएगा। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सुबह 6:40 पर हमारा दैनिक वैचारिक क्रम लेकर आएंगे सुबह सुबह। जी हाँ, सुबह 7:00। 7:05 पर कृषि चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम कृषि संकेत होगा। आपके फरमाइशी गीत सुबह 7:20 पर मनचाहे गीत कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं, और रात्रि 9:00 भी आप मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपने पसंदीदा नगमे सुन सकते हैं। सुबह 7:45 पर आप संगीत सरिता का आनंद लेंगे। शाम 5:30 पर भी संगीत सरिता हमारे श्रोता सुन सकते हैं। रात्रि 8:20 पर समय रहेगा संगीत सरिता का। लोक संगीत आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 8:15 पर, और लोक रंग श्रोता सुनेंगे शाम 6:45 पर। आज सुबह 8:30 आप बिंदिया कार्यक्रम सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार सुबह 9:50 पर होगा। 10:00 जिले की चिट्ठी, और सुबह 10:05 पर फोन करें, लोकगीत सुने। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे सुबह 11:00। युववाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:02।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार। हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें,

आज शाम 6:30 पर आप सदाबहार गीत सुनेंगे। चित्रपट संगीत रात्रि 8 बजे सुनिएगा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी सागर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। ये समय है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनने का। आइए आज इसकी 89वीं कड़ी सुनते हैं, जिसमें मुख्य गायक स्वर रहेगा रंजना जोगलेकर का।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने फिर राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

अभी श्रोता श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। आज आपने इसकी 89वीं कड़ी सुनी, जिसमें मुख्य गायक स्वर रहा रंजना जोगलेकर का। FM बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कुछ पुराने फिल्मी गीत आप तक पहुंचाने का। जी हां, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में छलिया, यह है फिल्म का नाम जिससे आज आप ये गीत सुनेंगे, मुकेश का गाया हुआ। श्रोताओं, एक संगीत जगत की जानी मानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी, जिसमें से कल्याण जी आज के दिन ही इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए थे, उन्हीं के संगीत निर्देशन में ये बोल कमर जलालाबादी के।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: आमने सामने यह फिल्म का नाम जिससे अब ये दुगाना आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। आनंद बख्शी के ये बोल हैं। जी हां, संगीत एक बार फिर कल्याण जी आनंद जी का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770-43-22-97।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
5: और आइए अब सुनते हैं हिमालय की गोद में इस फिल्म से ये गीत, जिसे लता मंगेशकर ने गाया, इंदीवर ने लिखा, और एक बार संगीत फिर कल्याण जी आनंद जी का।

और इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार। इंतजार है बस थोड़ा सा।

0: राष्ट्रपतिः मुसुनुरु ग्रामे भारतस्य प्रथमस्य अनुवांशिक रूपेण असंशोधितस्य उच्चविस्तार क्षमतायुक्तस्य पॉपकॉर्न मेज इत्यस्य संकर बीजस्य शुभारंभं करिष्यति। असौ कृषकेभ्यः सम्माननं प्रदास्यति तथा कृषिक्षेत्र संबंधान हितधारकान अन्यांच सहभागिनः संबोधयिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 7 बजे हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम सुबह सुबह का। इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
1: श्रोताओं, आज बात करते हैं प्रतीक्षा की। कई बार प्रतीक्षा के पल हमें भारी महसूस होते हैं, मगर इंतजार का भी अपना अलग ही मजा है। कहीं इंतजार खत्म होता है तो दूसरी जगह इंतजार शुरू हो जाता है, और ये दुनिया यूं ही आगे चलती रहती है। इंतजार को सिर्फ समय की बर्बादी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस समय का उपयोग करके कुछ सोचने, कुछ योजना बनाने में सकारात्मक रूप से भी तो किया जा सकता है। इंतजार करना हमें यह सिखाता है कि हर चीज के लिए हम आतुर ना हो। कभी कभी हर चीज हर वक्त हमारे हाथ नहीं आ सकती, हमें धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करनी होती है। प्रतीक्षा करना एक सकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म देता है, और ये हमें बतलाता है, सिखाता है कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। शायद अभी सभी चीजें हमारे पक्ष में ना हो, या अभी सही समय ना आया हो। जब सही समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, जब भी हम ये सुनते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो अच्छा महसूस होता है, और इंतजार की घड़ियां थोड़े आराम से कट जाती हैं। जिसमें धैर्य होता है वह आत्म नियंत्रण करना जानता है, और अपने आप को उस मुश्किल दौर में भी वो संभाल लेता है। और फिर वो वक्त आ जाता है जब मन चाहे परिणाम हमें मिलने लगते हैं। श्रोताओं, इस जीवन में हम बहुत चीजों का इंतजार करते हैं। कभी किसी परीक्षा परिणाम का इंतजार होता है, कभी हमें ट्रेन का या बस का इंतजार होता है, कभी किसी के आने का इंतजार होता है, कभी किसी से मिलने का इंतजार, कभी कोई खास अवसर आने का इंतजार, कभी मुश्किल दौर के चले जाने का इंतजार। यानी इंतजार असंख्य बार हमारे जीवन में हमारा साथी बनता है। इंतजार धैर्य, परिपक्वता विकसित करने और आत्म नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम भी तो होता है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, तो ये जो इंतजार है, ये उस व्यक्ति या चीज की असली कीमत हमें सिखाता है। इंतजार एक ऐसी चीज है जो निराशा और उम्मीद का एक मिश्रण सा है। कभी हम थकासा महसूस करते हैं, और कभी इस इंतजार के पल में हमें आशा की किरण दिख जाती है। यह हमें ये सिखाता है कि कुछ चीज हासिल करने में वक्त लगता है। कभी कभी इंतजार हमें आनंदित भी करता है। उन पलों में हम आने वाले पल को जीने की जैसे कोशिश करने लगते हैं। जब इंतजार के पल खत्म होंगे, इसलिए जब इंतजार के पल खत्म होंगे तो सुनहरा वक्त कैसा होगा, हम ये सोचते हैं। यदि कभी भी मन चाहे परिणाम ना मिल रहे हो, तब हमें धैर्य पूर्वक इंतजार करना ही चाहिए, और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन हमारी मनचाही मुराद जरूर पूरी होगी, ये आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसी शायर की इन पंक्तियों के साथ आज की बात को यहीं विराम देंगे कि जला जरूर हूं मगर इस एतमाद के साथ, कि मेरी लौ ने भरी बज्म जगमगा दी।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस के तहत आज भोपाल में कॉन्क्लेव। 130 से ज्यादा केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थान होंगे शामिल। सांची उप डाकघर का हुआ कायाकल्प। आज शाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से होगा लोकार्पण। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी। डिंडौरी बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम रीवा पहुंचकर रीवा शहडोल संभाग में अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर व्यक्ति तक राहत पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाओं और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित गांवों और नगरी वार्डों में विशेष चिकित्सा शिविर लगाने और पानी के स्रोतों के क्लोरिनेशन कराने को कहा गया है। उन्होंने फसल और मकानों के हुए नुकसान का तत्काल सर्वे कर RBC 64 के तहत सहायता देने के भी निर्देश दिए।
1: किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह हमारे द्वारा दिया जाए। तो इस तारीख से 27 तारीख जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ सावधानी के लिए भी बाढ़ के कारण से कुछ कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारत के पहले गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी नॉन GMO उच्च स्तर क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति किसानों को सम्मानित भी करेंगे। इस दौरान किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच संवाद भी होगा। प्रदेश को 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए सरकार आज भोपाल में केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ कॉन्क्लेव कर रही है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में IIT, IIM, एम्स, इसरो, DRDO और केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत 130 से ज्यादा संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव का शुभारंभ सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य विचार वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस है, यानी हर संस्थान प्रदेश के विकास के लिए एक संकल्प देगा। राज्य सरकार के विभाग खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग, पर्यावरण और कौशल जैसे क्षेत्रों की अपनी चुनौतियां संस्थानों के सामने रखेंगे। इसके बाद संस्थान अपने शोध, तकनीक और विशेषज्ञता के जरिए इन समस्याओं के समाधान की दिशा सुझाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सांची के उप डाकघर का आधुनिकीकरण और लुक एंड फील सुधारने का काम पूरा कर लिया गया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए डाकघर को आधुनिक और नागरिकों के लिए सुविधाजनक स्वरूप दिया गया है। आज शाम करीब 5 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी और डाक विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते डिंडौरी जिले ने जुलाई माह के मध्य में देश के 100 चयनित जिलों में प्रथम रैंक हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
3: डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कृषि, मिलेट उत्पादन,

0: प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई तथा जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडोरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के मध्य प्रथम रैंक हासिल की है। योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई एवं कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। डिंडोरी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वनोपज और ग्रामीण आजीविका पर आधारित है। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ ही श्री अन्न के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34,700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो कुटकी की खेती की जा रही है। जिले के पारंपरिक कोदो कुटकी उत्पादों को GI टैग प्राप्त होने से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
1: प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में नियमों के पालन की जांच के लिए कल भोपाल के 3 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया। आयुष्मान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भारत अरविंद शाह और विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए अनियमितताएं मिलने पर यशवी मल्टी स्पेशलिटी, सूर्यांश मल्टी स्पेशलिटी और मारुति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए तीनों अस्पतालों को 10 दिन में जवाब देने को कहा गया है। श्रावण मास के अंतिम और चौथे सोमवार को प्रदेश में आस्था और भक्ति का माहौल है। इस मौके पर भगवान महाकाल सहित प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। खंडवा के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आज भगवान की भव्य शाही सवारी निकाली जाएगी। वहीं आगरमालवा में राजाधिराज श्री बैजनाथ महादेव और मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव की पारंपरिक शाही सवारी भी निकलेगी। इन सवारियों में अखाड़े, आकर्षक झांकियां और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ट्रफ, चक्रवाती सिस्टम और निम्न दाब क्षेत्र के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दोनों जिलों में करीब 4 से 8 इंच तक बारिश का अनुमान है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन, जबलपुर, मंडला, सिवनी, शहडोल, रीवा और सीधी समेत प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, गुना और आसपास के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। जबलपुर पुलिस की महिला आरक्षक और राष्ट्रीय स्तर की बेसबॉल की खिलाड़ी वर्षा पटेल ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्षा ने 21 अगस्त की सुबह 9:07 पर 5,642 मीटर की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा और मध्य प्रदेश पुलिस का झंडा फहराया। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई है। दूसरे दौर के आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इस मुकाबले में जीतना जरूरी था, जबकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हार से बचना था। वहीं क्रिकेट में भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में 300 रन पर 5 विकेट से अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाएगा। भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले रखी है। वहीं एशियाई खेल के तहत जापान के आईची प्रांत और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों का चयन एथलेटिक्स, क्रिकेट, कैनो, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग और सॉफ्ट टेनिस समेत 10 खेलों के लिए किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में 25 खिलाड़ी खेल अकादमी और पूर्व अकादमी से हैं, जबकि 7 खिलाड़ी गैर अकादमी श्रेणी के हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित जननायक समारोह का समापन गोंड नायक राजा हीरा खान सिंह क्षत्रिय पर केंद्रित प्रभावी मंचन के साथ हुआ। झाबुआ में खाद्य सुरक्षा दल ने आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दुकानों का निरीक्षण कर कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस, वाटर टेस्टिंग और स्वच्छता अभिलेखों की जाँच की। डिंडोरी पुलिस लाइन परिसर में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छतरपुर में त्वरित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए गंभीर जन्मजात विकृति से पीड़ित नवजात को PM श्री एम्बुलेंस सेवा से बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इंदौर और गुना में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस और चल समारोह निकाले गए। शिवपुरी में पेयजल परिरक्षण अधिनियम में ढील देते हुए जिला प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। मंडला जिले के बिछिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में वन स्टॉप सेंटर की ओर से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जबलपुर के नेपियर टाउन में संभाग स्तरीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने DNA जाँच, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस के तहत आज भोपाल में कॉन्क्लेव, 130 से ज्यादा केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थान होंगे शामिल। सांची उप डाकघर का हुआ कायाकल्प, आज शाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से होगा लोकार्पण। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी। डिंडौरी, बालाघाट में अति भारी बारिश का

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। समय हुआ है मन चाहे गीत कार्यक्रम का। कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा। श्रोताओं, पहला गीत जो आप तक पहुँच रहा है हमारे श्रोताओं के अनुरोध पर, वो है फिल्म हसीना मान जाएगी से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गीत को गाया है, अख्तर रुमानी ने लिखा है। और जी हाँ श्रोताओं, हम बताना चाहेंगे कि कल्याण जी आनंद जी एक जानी मानी जोड़ी, उनके कल्याण जी आज हमसे रुखसत हो गए थे। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इस गीत को सुनना चाहा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय और बेबी किट्टू, भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा, राजू, जगदीश, वैष्णव कॉलोनी सनावत से ये हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से अनुरोध आया है हाजी इसाक लोलमानी, मोहम्मद उमर काजमी, हाजी अयूब शहरी का। आइए सुने ये गीत।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं आइए एक बार फिर कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में ये गीत सुनते हैं। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, आवाज़ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है। ये गीत है फिल्म बैराग से, जिसे आप सुनना चाहते हैं। गांव पांडर कावड़ा से अनिल बुरांडे, ऊषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री, हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से ये हैं जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह, शिवांगी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी, अंकित, ये हैं मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका, ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद यादव, अरविंद, रागिनी रिया, रेणु, रोनिका यादव, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब सुनते हैं सूरज फिल्म से ये गाना। मोहम्मद रफ़ी का साथ दे रही हैं सुमन कल्याणपुर, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गीत के लिए सुनना चाहते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे, विनोद खडसे, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशन लाल देवांगन, हेमलता डिम्पल, कुमारी भाव्या देवांगन, लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ये हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, मालोट पंजाब से अनुरोध आया है सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, अनमोल मिगलानी का, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक बार मुस्कुरा दो जी, ये फिल्म का नाम है जिससे अगला गीत आप सुनेंगे, जिसे किशोर कुमार ने गाया है, इंदीवन ने लिखा है, ओपी नैयर ने इसके लिए संगीत तैयार किया है। आप सुनना चाहते हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक, जियाउल हक, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, ग्राम बिनेका से बलराम सेन, अरविंद सेन, रविंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, रेखा, संगीता, रामदेवी, नंदिनी, रिया, दीप्ति, कौशल, आर्यन, आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा।

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: एक बार फिर किशोर कुमार को सुनते हैं। ये रचना आनंद बख्शी की है, संगीत आर डी बर्मन का है। ये गीत है फिल्म अलग अलग से, जिसको सुनना चाहते हैं हमारे ये

श्रोता नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरल जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल, इन्होंने आर्य नगर कोका भिलाई से अनुरोध भेजा। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, अंजलि और नेपाल पहले सागर से अनुरोध करता है। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका न्यूपुर, ऋषिका रॉबिन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरसान, अपान और उनके परिवारजन। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर। आइए सुने आप सबकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, इसी गीत के लिए एक अनुरोध और है। गुजराती बाजार सागर से राजेश मनवानी, शंकर सचदेव, अनिल गंगवानी, सपना मनवानी, चंपक भाई जैन, निर्मल भोले बजाज, रूपेश मनवानी और सिंधी कॉलोनी से सीमा महक, अंजलि भूमि, बरका और प्रियंका मनवानी।

0: अभी श्रोता मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपने पसंदीदा नगमे सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। वक्त हुआ है संगीत सरिता का। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये बेहतरीन गजल।
1: कौन कहता मोहब्बत की जुबान होती है, होती है।

0: श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि फ़ोन करें, लोकगीत सुनें। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज शाम 4 बजे से की जाएगी। हमारा फ़ोन नंबर 240-845 और सागर का एसटीटी कोड है 075-82।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब

0: पहले से सस्ता हो सकता है।
1: जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी, तुझ पे हो जाऊंगी कुर्बान, तुझे चाहूंगी। आइए सुने अनुराधा पौडवाल को।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: आओ ऐसे मोहब्बत करें, मर भी जाएं तो जिंदा रहें। ये हैं भूपेंद्र और मिताली।

इस गजल के साथ ही संगीत सरिता यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद यानी सुबह के 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से, जिसके लिए कर रहे हैं बस थोड़ा सा इंतजार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम

0: रिजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रिजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि ये महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो

0: बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में पांचवें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: हर हर महादेव।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी सागर है। 8:15 हुए हैं। वक्त है लोक संगीत का। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं राजू पटेल की आवाज में ये लोक भजन।

0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
3: और आइए अब सुनते हैं कैलाश खरे से ये झूला गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: ये हैं बद्री प्रसाद खरे।

अभी श्रोता लोक संगीत में कुछ बुंदेली लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। 8:30 हुए हैं। समय है कार्यक्रम पिंधिया का।

सखियो नमस्कार। बिंदिया कार्यक्रम सुन रही हमारी सभी प्यारी प्यारी हंसती मुस्कुराती सखियों का स्वागत है हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम बिंदिया में। और सबसे पहले तो सखियो आप सभी सखियों को हमारा हंसता मुस्कुराता नमस्कार। हंसता मुस्कुराता नमस्कार इसलिए सखियो क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है और हमारी हर सखी पूरे साल इस त्यौहार का इंतज़ार करती है। भाई भाभी का आना या हमारा स्वयं मायके जाना, प्यार से त्यौहार मनाना, मिलना मिलाना, खुशियां बांटना, एक अलग ही अनुभव होता है ना सखियो इस त्यौहार पर। त्यौहार ही ऐसा है, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े, एक साथ खेलना, एक दूसरे की शिकायत करना और डांट पड़ने पर गुस्सा हो जाना, ये सब बातें याद करके वाकई पूरा बचपन याद आ जाता है। तो भाई सखियो आप भी बिल्कुल राखी की तैयारियों में निश्चित तौर पर व्यस्त होंगी, बस दो चार दिन ही रह गए हैं, तो राखी भी खरीद ही ली होगी आपने। और यदि अभी तक नहीं खरीद पाई हैं तो भाई बहुत ही कम समय बचा है, तैयारी कर लीजिए और पूरे उत्साह के साथ त्यौहार मनाइए। बस थोड़ा सा ये ज़रूर कहेंगे हम कि कई बार कुछ बहनों से सुनने में आता है कि हम तो इतनी महंगी राखी लेके गए थे, मिठाई भी अच्छी वाली थी, आजकल तो आना जाना भी सस्ता नहीं है,

0: और वहाँ से देखो ये मिला, इसकी तो हमें उम्मीद भी नहीं थी। कई सखियाँ तो गुस्सा भी हो जाती हैं सखियों, तो ऐसी सोच रखना ठीक नहीं है। किसी भी रिश्ते में उसका आपके जीवन में क्या महत्व है, ये बात मायने रखती है सखियों। परंपराएं मायने रखती हैं, प्रेम स्नेह मायने रखता है। वहाँ से हमें वापसी में क्या मिला, इस बात को तो जहन में लाना भी ठीक नहीं है सखियों। हाँ बिल्कुल, शगुन मायने रखता है, उपहार भी मायने रखते हैं, लेकिन उनकी कीमत लगाना या अपने से उसकी तुलना करना, ये बात ठीक नहीं है। इस पर ध्यान देना या देने की अपेक्षा एक दूसरे की सुरक्षा का वादा कीजिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा कीजिए, समय दीजिए एक दूसरे को, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, खुशियां साझा कीजिए। यदि भाई इस दिन को कहीं दूर है, इस दिन को आपके साथ नहीं है, तो वीडियो कॉल करके ढेर सारी बातें कर लीजिए। फिर देखिए सखियों, राखी का त्यौहार आप दोनों भाई बहन के बीच रिश्ते को कितना मजबूत कर देता है। चलिए ये तो हुई सखियों रक्षाबंधन की बात, अब हम बात करेंगे एक ऐसे अंग की जो हमें दुनिया से जोड़ता है सखियों। देखते हैं हम चीज़ों को, सीखते हैं, साथ ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी मदद मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकृति के दिए हुए अनमोल उपहार यानी कि आँखों की। और आँखों की बात करने का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है सखियों कि 25 अगस्त यानी कल से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दौरान ऐसे लोग जिनके जीवन में रोशनी नहीं है या जिनको प्रकृति ने इस नियामत से वंचित रखा है, उनके जीवन में भी प्रकाश की किरण जगमगा सके, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, ताकि वंचित लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। ज़रा सोचिए सखियों, हमारे जीवन में रोशनी है, इस दुनिया की खूबसूरती को हम निहार सकते हैं, आँखों में बसाकर उसे अपने दिल में उतार सकते हैं, लेकिन जिनको ये मौका नहीं मिला है या जो वंचित रह गए या किसी हादसे का शिकार हो गए, उनके जीवन में कितना अंधेरा है ये तो हम सखियों महसूस भी नहीं कर सकते, है ना, चाह कर भी इस बात को समझ नहीं सकते। तो सखियों यही मौका है जब हमें स्वयं को और अपनी दूसरी सखियों को और अपने साथियों को जागरूक करना होगा, ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि किसी एक के जीवन में हम उजाला ज़रूर लाएंगे। ये केवल एक अभियान नहीं है सखियों, बल्कि जिम्मेदारी है हमारी, कर्तव्य है हमारा कि आगे आए हम लोगों को इस बारे में बताएं कि आज यदि हम अपने नेत्रों को दान करने के लिए पंजीकरण करवा लेते हैं तो मृत्यु के बाद किसी का जीवन रोशनी से भर सकता है। यानी नेत्रदान एक ऐसा कार्य है सखियों जो मृत्यु के बाद भी हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करता है या सार्थकता प्रदान करेगा। तो सखियों आजकल बहुत विकसित हो गई है तकनीकी और नेत्रदान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दे रखी है, और ऑफलाइन तो है ही सखियों, किसी भी सरकारी अस्पताल के नेत्र विभाग में संपर्क कर सकते हैं या नज़दीकी आई बैंक में भी संपर्क किया जा सकता है। तो सखियों इस बारे में अपनों से बात ज़रूर करें, थोड़ा सा जागरूक रहने के लिए कहा जा सकता है, और नेत्रदान के लिए आगे आने के लिए भी या आगे आकर लोगों को समझाइश देना या स्वयं एक उदाहरण बनना भी बहुत अच्छी पहल हो सकती है, ताकि हमारी आँखों से कोई और भी इस दुनिया को देख सके। और अब सखियों आप तो जानती ही हैं कि बातें करना, मिलना मिलाना, जानकारी साझा करना, ये सब हमारी सखियाँ बड़े चाव से करती हैं। क्या होता है सखियों, बात करने से संबंध मजबूत होते हैं, आपसी समझ और विश्वास पनपता है, भावनात्मक जुड़ाव भी गहरा होता है, और कहीं कोई मतभेद है, कोई गलतफहमी है तो उसका समाधान भी निकलता है ना। जी हाँ, कहा भी जाता है कि बात करने से ही बात बनती है, तो आइए हम भी बात कर लेते हैं अपनी सखियों से। जी हाँ, हेलो सखी, ये वही क्रम है सखियों जहाँ हम अपनी सखियों से बात करते हैं, वे अपने विचार साझा करती हैं और अपनी पसंद के गीत की फरमाइश भी करती हैं। आइए शुरू करते हैं हेलो सखी, जिसमें सखियों से रूबरू हैं हमारी सखी सुब्रता यादव।
1: सखियों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो सखी में। आइए जुड़ते हैं हमारी पहली कॉलर से और जानते हैं उनके विचार। हेलो सखी कार्यक्रम, आप कौन बोल रही हैं?
2: विनीता से, राम देवी से।
1: राम देवी जी कैसी हैं आप?
2: हम
1: हम भी अच्छे हैं। क्या कर रही थी आप?
2: खाना बना रहे हैं।
1: क्या बना रही हैं आज खाने में?
2: कड़ी चावल बना रहे दीदी।
1: आप जो कड़ी बनाती हैं पकौड़े वाली बनाती हैं कि सब्जियों वाली?
2: पकौड़े वाली बना रहे हैं,
1: बेसन के पकौड़े ऐसे सिंपल।
2: हाँ,
1: कुछ लोग
2: भी बना,
1: हाँ लौकी के भी बना के डालते हैं इसमें।

0: चलिए, कढ़ी तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज बढ़िया, अच्छे मौसम भी है और आप आनंद लीजिए अपने भोजन का। रामदेवी जी, ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, आपकी कोई तैयारी है? कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, कुछ खरीदारी करनी है?
1: नहीं दीदी, अभी कुछ नहीं। हमारे यहाँ हमारी सास खत्म हो गई थी, तो अनुभव है उनको, अब कछु की तैयारी नहीं है, इनकी तैयारी है।
0: अच्छा, तो रामदेवी जी ये बताइए कि अभी आपके यहाँ बारिश कैसी हो रही है?
1: थोड़ी थोड़ी सी हो रही, ज्यादा नहीं हो रही है।
0: कीचड़ तो नहीं हो जाता गांव में?
1: नहीं नहीं।
0: अच्छा,
1: थोड़ा हो गया, ज्यादा नहीं गिर रहा।
0: हाँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: दो लड़की एक लड़का।
0: कितने बड़े बड़े हो गए बच्चे?
1: एक बड़ी वाली लड़की 15 में चल रही है, और लड़का है मतलब 8वीं पढ़ रहा।
0: हाँ,
1: और छोटी वाली बच्ची 3री पढ़ रही।
0: तो हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने क्या सोचा है, आगे क्या कराना है बच्चों को, कुछ सोचा है?
1: हाँ, आगे पढ़ाए दीदी।
0: हाँ चलिए, अच्छी बात है, बच्चों को जितना हो सके उतनी शिक्षा देनी है।
1: हाँ हाँ।
0: हम आपको एक बात बताएं कि अभी हमारे यहाँ 25 अगस्त से एक नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम अपने मरने के बाद नेत्रों का दान करेंगे।
1: जी मैडम।
0: आपके माध्यम से हम सभी श्रोताओं से कहना चाह रहे हैं कि नेत्रदान का संकल्प जरूर लें।
1: जी
0: रामदेवी जी, अब हम बात कर लेते हैं आपके बारे में। आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है?
1: खाना पीना, घर का काम करते हैं, कुछ नहीं।
0: कोई शौक नहीं है, मेहंदी लगाना या झूला झूलना, किताबें पढ़ना या कुछ और, कुछ बुनाई सिलाई करना?
1: मेहंदी लगाना करते हैं हम तो, ज्यादा पसंद।
0: अच्छा, तो अभी तो बहुत अच्छा मेहंदी का मौसम चल रहा है, सभी लोग लगवाते हैं। तीज आने वाली है, अभी हरियाली तीज निकली, और रक्षाबंधन पे भी लोग बहुत मेहंदी लगवाते हैं।
1: हाँ।
0: तो किस तरह की मेहंदी लगा लेती हैं आप?
1: हम तो लगा लेते हैं,
0: बेल वाली और भरे हाथ वाली दोनों बना लेती हैं आप?
1: हाँ, दोनों बना लेते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा हुनर है आपके पास, और लोग लगवाने आते होंगे आपके पास फिर?
1: हाँ, आ जाती है, तो कोई लड़की आ गया बगल ही में, मतलब पास ही में, जो उनको भी लगवाने हैं लगवा लेते।
0: बहुत बढ़िया, हम आपके पास होते तो हम भी लगवा लेते आपसे मेहंदी।
1: हाँ मैडम, आपको भी लगा देती।
0: जी जी, चलिए, आपकी बिटिया भी लगा लेती होगी थोड़ी बहुत तो?
1: हाँ हाँ, मैं बच्ची लगा ली, बड़ी वाली होशियार है ना।
0: हाँ, अच्छी कला है आपके पास।
1: हाँ, कढ़ाई अड़ाई कर लेती है जी, गेट पट्टिया बना लेती।
0: बहुत बढ़िया। चलिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर भी रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब बच्चे अपने होनहार हो रहे हैं। ठीक है रामदेवी जी, आज बताइए हमारे कार्यक्रम में आपको गीत कौन सा सुनना है?
1: दीदी बवाल सुनो ना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
0: बहुत अच्छा गीत है। आपके कितने भैया हैं?
1: दो भैया हैं हमारे।
0: चलिए, आपकी फरमाइश के माध्यम से आपके भाइयों को पहुँचाते हैं ये गीत, और हम सभी मिलकर इस गीत का आनंद लेते हैं।

0: हेलो सखी कार्यक्रम, आप कौन बोल रही हैं सखी?
1: हाँ, हम तारा रेकवार बोल रहे हैं तहसीली से।
0: तारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तारा जी, ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मेरे बच्चे भी हैं और थोड़े बड़े बड़े हो गए, 10 साल के और 14 साल के। अब मैं बाहर जाती हूँ, गुड़िया देखती हूँ एक।
0: अच्छा, तो अभी क्या कर रही थी आप?
1: अभी घर पे हैं, बस निकली रहे हैं।
0: अच्छा, तो खाना पीना बन गया आपका?
1: हाँ बन गया मैम।
0: ये बताइए तारा जी कि अभी हमारे यहाँ बिल्कुल पास में ही आ गया है त्योहार रक्षाबंधन का।
1: जी,
0: आपकी शॉपिंग हो गई, तैयारियाँ हो गई रक्षाबंधन की?
1: नहीं अभी नहीं हुई, अब थोड़ा और 2-4 दिन रह जाएंगे जब होगी शॉपिंग।
0: अच्छा, क्या खरीदना है इस बार आपको?
1: मैं बस वही राखी लेते हैं और तौलिया लेते हैं, रूमाल लेते हैं।
0: और मिठाई वगैरह भी खरीदती होंगी?
1: मिठाई उसी दिन खरीदते हैं।
0: अच्छा, तो आपके भैया लोग आपके पास आते हैं कि आप जाती हैं?
1: मेरे 4 भाई हैं तो भाई के पास मैं जाती हूँ और बाकी भाई लोग आ भी जाते हैं इधर। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई लोग इधर भी आ जाते हैं और नहीं आते तो हम जाते हैं।
0: अच्छा, तो कुछ खास तैयारियाँ करती हैं, मेहंदी वगैरह लगाती हैं?
1: हाँ मैम, बहुत खास तैयारी रहती है हमारी रक्षाबंधन की।
0: अच्छा, कपड़े अपड़े सोच लिए क्या पहनेंगी उस दिन, कौन सी साड़ी पहनेंगी?
1: हाँ मैम, पहले से तैयारी है कि 6 महीने पहले जो साड़ी ली थी वही पहनना है।
0: अच्छा, हमारे यहाँ सागर की परंपरा में कुछ ऐसा भी है कि भाभियों के लिए भी कुछ लिया जाता है शायद, या उनको भी रक्षाबंधन ले जाते हैं?
1: हाँ मैम, चूड़ी लेते हैं हम लोग, हरी चूड़ियाँ लेते हैं हम भाभी लोग के लिए, मिठाई भी खिलाते हैं, राखी भी बांधते हैं।
0: अच्छा, उनको भी राखी बांधते हैं आप लोग?
1: हाँ, भाई को बांधेंगे, फिर भाभी को बांधेंगे राखी और बढ़िया मिठाई खिलाएंगे।
0: चलिए, ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो भाभी आपके यहाँ है और उनको भी उस परिवार में शामिल होने जैसा महसूस होता है। एक अच्छी
1: एकता बिठाते हैं भाभियों को भी।
0: हाँ चलिए, बहुत अच्छा।
1: वो अपने मायके जाती हैं।
0: जैसे बहुत कम जगह ये परंपरा होती है, पर इधर हमारे यहाँ ये परंपरा हमने देखी बुंदेलखंड में कि भाभियों को बांधते हैं राखी।
1: नहीं, हमारा क्या है, असल में हम पास में है, बस एक भाई दूर में है, तो दूर है तो वो आ जाता है, पर इस बार मेरा वो भाई बोल रहा है कि आप आओ, 5 साल से मैं आ रही हूँ, आप आओ, इस साल नहीं आओगी। तो 3 भाई इस बार।
0: चलिए, बहुत
1: 3 लोकल की है। वो लोग अपनी मायके चली जाती है और फिर हम वही रह जाते हैं, फिर दूसरे दिन हम आ जाते हैं।
0: चलिए बढ़िया है। आप ये बताइए कि आपके जब बच्चे आपस में रक्षाबंधन के त्योहार को मनाते हैं, उसका अर्थ वो समझते हैं कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य क्या है?
1: हाँ समझते हैं, वो लोग भाई बहन में प्यार है ते हैं, तो हमें ही बताते हैं बेटा लड़ो मत, मतलब ये जो रक्षाबंधन आ रहा है, जब बहन बैठे रहोगे तो बोलते हाँ माँ अब नहीं लड़ेंगे। हाँ, थोड़ी देर होता है तो फिर
0: देखिए बच्चों में तो ये होता ही है। और ये जो त्योहार है, ये भाई बहन के प्रेम का टूट बंधन का ये त्योहार है, बच्चों को भी ये बात सिखानी है कि इस त्योहार का क्या अर्थ है, क्या मतलब है।
1: हाँ मैम बिल्कुल, हम सिखाते हैं। और हमारा तो बचपन से 10 साल की उम्र में हमारे बहुत अच्छे भाई है, हम एक ही बहन है, हमारा तो बहुत ध्यान रखते हैं हमारे भाई।
0: तारा जी, अच्छा एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको करना क्या अच्छा लगता है, क्या आपकी हॉबी क्या है, किस चीज में आपको आनंद आता है?
1: हमारे लिए हम अच्छे से घर का खाना बनाते हैं, सादा सिंपल, इसमें हमें मतलब टेंशन ना हो।
0: आपको किस चीज की सब्जी पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है?
1: देखो हमें दही बड़ी पसंद है, पनीर की सब्जी पसंद है।
0: अच्छा अच्छा, तारा जी अपनी पसंद का भोजन आप बनाती हैं कि नहीं बनाती?
1: हम भी बना लेते हैं और हमारे मिस्टर वो हैं मतलब हलवाई हैं, तो जो हमें खाना होता है तो वो भी बना देते हैं।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट फैमिली है आपकी। अच्छा ये बताइए कि आपने जब शादी के पहले क्या जिस परिवार की कल्पना की होगी?
1: नहीं, हमने कहा कि हमें परिवार मिलेगा।
0: तो अभी आप खुश हैं अपने जीवन में?

0: हाँ बहुत खुश है, हमें 15 साल हो गई शादी को, 2 बच्चे, हमारी सासू माँ है, ससुर है नहीं है, हम मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं, सासू माँ भी अच्छी है, लड़की जैसा रखती है हम।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपके परिवार के बारे में जान के, आपके विचारों को जान के। तारा जी आप बताइए आज हमारे कार्यक्रम में आपको गीत कौन सा सुनना है?
0: मैं भाई बहन का सुनवा दी।
1: अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, इसी गीत के साथ हेलो सखी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: हेलो सखी, ये क्रम है हमारा सखियों, जिसमें आप फोन नंबर 07582408045 पर बुधवार को कॉल करके अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकती हैं। और फोन नंबर जरूर लगाइए आप ये वाला, और हिस्सा बन जाइए अपने मनपसंद क्रम हेलो सखी का। सखियों, और अब बारी है ज्योति पुंज क्रम की तरफ चलने की, क्योंकि आप तो जानती हैं इस क्रम में ऐसी महिला शख्सियत की बात करते हैं हम, जो हमें निश्चित तौर पर आगे बढ़ना सिखा गई हैं कि जरूरतमंदों की सेवा करना, उनकी सहायता करना कितना सुकून भरा कार्य है। हाँ, कुछ तो अंदाज आपको लग ही गया होगा सखियों कि सेवा भावना का जिक्र आते ही नीली बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी माथे से लपेटे हुए एक महिला जिनकी तस्वीर हमारे जहन में सबसे पहले उभरती है, वो हैं मदर टेरेसा। सखियों, मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। 26 अगस्त 1910 को उनका जन्म हुआ। 1929 में वे भारत आ गईं और फिर हमेशा के लिए भारत में ही रह गईं। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम से एक संस्था बनाई, जो गरीबों, बीमारों, अनाथों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगी हुई है। सखियों, मदर टेरेसा ने 18 साल की उम्र में ही नन बनने का फैसला कर लिया था, और जब वे भारत आईं तो लगभग 20

0: 20 सालों तक कोलकाता में स्कूल में अध्यापन कार्य किया और प्रधान अध्यापिका भी रही सकी। इस दौरान उन्होंने अनुभव किया कि गरीब तबके के लोग या असहाय या जरूरतमंदों के जीवन में कितनी कठिनाइयां बनी रहती हैं सखियों, किन पीड़ाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, और इन बातों का उनके जीवन पर गहरा असर हुआ। इन्हीं सब बातों से द्रवित होकर उन्होंने दुनिया भर में अनाथालयों की स्थापना की, कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया, एड्स से पीड़ितों के लिए सहारा बनी, और ऐसे निसहाय लोग जिनका कोई घर नहीं था सखियों, उनके लिए निर्मल हृदय जैसे घरों की स्थापना की, जहां मृत्यु के निकट पहुंचे लोगों को गरिमा के साथ रखा जाता था। और सखियों, मदर टेरेसा की बनाई हुई ये विरासत आज भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से अपना दायित्व बखूबी निभा रही है, ज़रूरतमंदों की सेवा कर रही है और पूरे विश्व में प्रेम और सेवा की मिसाल बनी हुई है। तो सखियों, मदर टेरेसा आज हमारे बीच नहीं है। 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उन्होंने अंतिम सांस ली थी सखियों, लेकिन वे हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। उनका दया और ममतामयी चेहरा हमेशा हमारी आंखों में रहेगा, क्योंकि वे भारत रत्न हैं सखियों, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। 1979 में उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया था। कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि भी 2016 में उन्हें प्रदान की गई थी। तो सखियों, आज उनकी जयंती के मौके पर हम उन्हें प्रेम स्नेह भरा नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और अपने आपसे ये वादा करते हैं सखियों कि हमारे आसपास कहीं कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा वो हर संभव सहायता हम ज़रूर करेंगे। चलिए सखियों, यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से अंतराल के लिए, बस अभी हाजिर होते हैं।
1: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
2: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
2: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है।
3: News on AIR।
0: अंतराल के बाद सखियों एक बार फिर से स्वागत है आपका। सखियों, हमेशा कहा जाता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हर तरह के समय के लिए हमें थोड़ी बहुत तैयारियां तो पहले से ज़रूर रखनी चाहिए। और हमारे घरों में हमें शुरू से ही ऐसा कहा जाता है कि ज़रूरत के वक्त के लिए या बुरे समय के लिए हमेशा तैयार रहो, है ना भाई। हम तो अपनी नानी के साथ रहे हैं तो उन्होंने तो ये बुनियादी बातें हमें खूब सिखाई हैं। बचत करना सिखाया है, कम बजट में अच्छे से घर चलाना सिखाया है, कम समय में काम कैसे करना है, यानी उसी काम को फटाफट से कैसे करना है, ये सब शुरू से ही सिखाया गया है सखियों में। साथ ही ये भी कहा जाता था कि समय का कोई भरोसा नहीं, कब करवट ले ले, है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। और सखियों, यही हाल प्रकृति का भी है। प्रकृति कब अपना रौद्र रूप दिखा दे कोई भरोसा नहीं है, जैसे अचानक से भूकंप का आ जाना या बारिश के चलते जल का स्तर बढ़ जाना। जैसे अभी हाल ही में सुना हमने कि असम में क्या हालात हुए सखियों, कितनी परेशानी हुई लोगों को बाढ़ आ जाने से, लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी, जानमाल का नुकसान हुआ, कृषि को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सखियों। और इन हालातों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी खड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मच्छरों से पनपने वाली बीमारियां जन्म ले लेती हैं ना, हैजा है, टाइफाइड है, ये जल जनित बीमारियां हैं, इनका भी खतरा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है सखियो, ऐसे हालातों के लिए छोटी मोटी तैयारी हम पहले से करके रख सकते हैं। जैसे एक बैग तैयार किया जा सकता है, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, कुछ आमतौर पर उपयोग होने वाली दवाइयाँ हैं, टॉर्च है, खास खास दस्तावेज़ हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मोबाइल की एक्स्ट्रा बैटरी है, बैंक पासबुक है, अकाउंट नंबर वगैरह की जानकारी के लिए। ये सब इकट्ठा करके हम एक जगह रख सकते हैं सखियों। साथ ही कुछ पैसे भी डाल के रख सकती हैं। एटीएम कार्ड भी आपात स्थिति

परिस्थितियों में बहुत काम आएगा, इसलिए वो भी रख सकते हैं। और जैसे कोई आपदा की चेतावनी जारी की जा रही है, संभवतः कोई अप्रिय स्थिति बनने वाली है, तो इसके लिए आगाह किया जा रहा है, तो बैग आपने तैयार किया है जो उसी में पानी की बॉटल है, सूखा नाश्ता है, ये सब भी रख सकती हैं, जिसमें इस कठिन समय में थोड़ा बहुत काम तो चलाया ही जा सके, है ना। हाँ, एक बात ये है कि आजकल मोबाइल में सबके नंबर सेव होने से कुछ एक दो नंबरों के अलावा हमें किसी के नंबर याद नहीं रहते, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ खास दोस्त या करीबी रिश्तेदारों के नंबर एक डायरी में लिखकर उसी बैग में रख सकती हैं। साथ ही कुछ खास इमरजेंसी नंबर भी जो मौके पर पहुंचकर सहायता दे सकते हैं, कोई एनजीओ है जो आपको लगता है कि राहत कार्य पहुंचाने में मदद कर सकता है, फायर ब्रिगेड है, और कोई संस्था जो आपको लगता है कि ऐसे वक्त में मदद के लिए आगे आ सकती है, तो उनसे संपर्क कैसे किया जाए, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर पहले से अपने पास लेकर रख सकती हैं, है ना। और ये सब तैयारियां सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के समय लागू नहीं होती सकी हो, आप कहीं घूमने जा रही हैं, 10-12 दिन 15 दिन का टूर है आपका, तो इस तरह का बैग या किट आप वहां के लिए भी तैयार करके लेके जा सकती हैं। हालांकि हमारी तो यही दुआ है सखियों कि हमारी सखियों की झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, लेकिन फिर भी कभी कोई बुरा वक्त जीवन में आता है, चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है, तो मानसिक तौर पर हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना है। चलिए अब आखिरी बात ये कि ऐसे समय में कहीं भी घूमने जाने का या पिकनिक स्पॉट पर जाने की योजना ना बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बारिश के चलते इन दिनों झरने देखने की योजनाएं खूब बन जाती हैं। कई बार बच्चे नहाने भी उतर जाते हैं, तालाबों में भी उतर जाते हैं, सेल्फी का भी चलन खूब है आजकल, जो थोड़ा सा रिस्की होता है सखियों, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता दे देती है, पढ़ भी रहे हैं आए दिन अखबारों में, तो थोड़ी सी समझदारी से बच्चों को समझा बुझाकर उनके साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है, है ना। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह हम फिर आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर हाजिर होंगे, तब तक आप खुश रहें, मौसम का पूरा आनंद लेते रहें, मायके जाएं, भाई के साथ बढ़िया समय बिताएं, सहेलियों के साथ झूला झूलें और खूब गीत गाएं। इन्हीं सब बातों के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप सुनती रहिए आकाशवाणी सागर।

अभी श्रोता सुन रहे थे बिंदिया कार्यक्रम, ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आई हेट लव स्टोरीज, आइए सुनते हैं इस फिल्म से ये गाना विशाल ददलानी की आवाज में, अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना

0: चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
3: मिलो जो तुम्हें बताए।
2: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
4: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
2: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

सलीम मर्चेंट और बनी दयाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे बैंड बाजा बारात फिल्म से ये गाना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक सलीम सुलेमान का। अगला गाना कर सकता है आपको थिरकने पे मजबूर, सुनते हैं ट्यूबलाइट फिल्म से ये गाना। कमाल खान, देव नेगी, नक्श अजीज और तुषार जोशी की आवाज़ों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीत

0: छोड़ो। अलीशा फिल्म से आप सुन रहे थे अनुष्का मनचंदा, न्यूमन पिंटो की आवाज में गाना, जावेद अख्तर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: आ

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आप

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी पर।

0: शिकार।
1: दोस्तों आनंद जी का जन्म 1932 में आज ही के दिन यानी 2 मार्च को हुआ है कच्छ भूज के गांव कुंडरोड़ी में। वैसे दोस्तों संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी एक रूप हैं, तो केवल आनंद जी की बात नहीं होगी साथ ही साथ कल्याण जी की भी बात होगी। कल्याण जी आनंद जी फिल्म संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे हम कह सकते हैं 2 जिस्म एक जान। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कल्याण जी और आनंद जी 2 भाइयों के नाम हैं, पर वो यूं याद किए

वैसे वो दौर जोड़ीदार संगीतकारों का नहीं था, केवल शंकर जयकिशन ही एक नामी गिरामी जोड़ी उस दौर में थी। बाकी सारे संगीतकार जो थे, जो टॉप के संगीतकार थे, वो सब अकेले ही अपने संगीत का काम किया करते थे। हाँ, ये बात और है कि उनके साथ होते थे असिस्टेंट्स, अरेंजर्स वगैरह, पर कल्याण जी आनंद जी वो पहली जोड़ी थी जिसने ऐसे जोड़ीदार संगीतकारों के लिए राहें रोशन की।

दोस्तों, संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पहले जो जोड़ी लोकप्रिय थी वो थी शंकर जयकिशन की। इनके अलावा इनके भी पहले जो संगीतकार जोड़ी थी वो पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम की। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, पहले कल्याण जी वीर जी शाह इस नाम से कल्याण जी भाई संगीत दिया करते थे। कल्याण जी का जन्म कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी में 30 जून 1928 को हुआ। कल्याण जी आनंद जी का संगीत सफर शुरू हुआ है मुंबई के गिरगांव से, जहां उनके पिता वीर जी भाई शाह कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी से आकर मुंबई के गिरगांव इलाके में किराना माल की दुकान चलाया करते थे। उनके एक ग्राहक ऐसे थे जो संगीत के मर्मज्ञ थे। उन्हीं से कल्याण जी भाई ने प्रथम संगीत की दीक्षा ग्रहण की। वही बात आनंद जी के साथ भी हुई। दोनों ही भाई एक ही गुरु से संगीत की शिक्षा पाते रहे। दोस्तों, मुंबई वैसे ही कला नगरी है और गिरगांव में संगीत की जानकारी रखने वाले कई माहिर उस दौर में रहा करते थे। एक जगह से थोड़ी ही दूरी पर संगीत का एक जाना माना घराना भी था, भेंडी बाजार घराना। कई संगीतकार यहाँ रहा करते थे। स्नेहल भाटकर, दत्ताराम वाडकर, ये नाम उल्लेखनीय हैं। तो कल्याण जी ने संगीत में करियर करने की ठान ली। शुरुआत के दौर में बतौर सपोर्टिंग संगीतकार वो काम करते रहे। अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार हेमंत कुमार के लिए फिल्म नागिन में उन्होंने क्ले वायलिन पर जो धुन बजाई, जिससे उनका नाम सबकी जुबान पर आ गया।

0: कल्याण जी भाई ने इसी दौरान कल्याण जी, वीर जी और पार्टी नामक एक सांगीतिक ग्रुप भी बनाया था, जो संगीत का जीवंत शो यानी लाइव ऑर्केस्ट्रा किया करता था। ये इस प्रकार का पहला लाइव म्यूजिकल शो हुआ करता था। आनंद जी भाई जब विविध भारती के स्टूडियो पधारे थे तो उन्होंने जो बातें कही थी, सुनते हैं उन्हीं से उनके अपने विचार।
1: हर सिचुएशन जो है गाने की, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कोई तो होगा। तो गिरगांव में हम रहते थे तो दत्तवन गुजराती लोग बनिए जो हैं वो दत्तवन करते हैं, तो दत्तवन लेने के लिए पिताजी ने मुझे भेजा। ये होता था कि दत्तवन जो अच्छे ले आता तो समझदार लड़का है, तो ये एक एग्जांपल होता था। तो दत्तवन लेने को भेजा मुझे, तो वहाँ पे दत्तवन काटने वाली लड़की जो है दत्तवन काट रही थी और उसके बीच में जो जहाँ पे ये होते हैं ना गठान, उनको काट के फेंक देती है। तो बैठे बैठे वो सामने वाले लड़के को मार रही थी, तो उसने भी फिर चिल्ला के बोला, ए क्या कर रही है तू, ये कर रही है। तो उसने बोला कि तेरे को मैं मने में थोड़ी मना किया, तू भी मारना। तो एक मुखड़ा आ गया कि भाई देखो, ये एंगल रोमांस का ये भी है, तो उसका भी उस भाषा में तो लिख नहीं सकते, तो कंकरिया हमारे करके इशारे यूं करके रख दिया था कि भाई इसको कहीं आएगा तो बोलेंगे कि भाई डाल दो। तो जहाँ पे वो सिचुएशन आई कि मटके लेके निकल रही, तो बोले ये ऐसे कोई डाल दो मटकी।

मेरे देश की धरती के इस देश की धरती, पहले लिखा गया था कि इस देश की धरती सोना उगले उगले ही थी मूर्ति। तो मैं बोला एक तो उगले सब समझेंगे नहीं, तो बोले नहीं वहाँ तो समझते उगले, आपके वहाँ उगले नहीं समझते होंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं बोला जो आसान तरीका है, इस गाने में बंद हो जाता है और मेरे अपना लगता है, अपनेपन का एहसास होता है। तो इस पर बहस चल रही थी कि इस रखें कि मैं हरे रखें। तो इतने उसमें चार पाँच दिन जब भी सिटिंग होती थी तो कि भाई क्या रखें, मेरे रखें कि इस रखें, इस रखें कि मेरे रखें। यूँ करते करते आखिर में मेरे देश की धरती और ये गाने ने

0: जाए।
1: यहाँ तक कल्याण जी भाई के साथ बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे आनंद जी भाई, पर जब इन्हें फिल्म सट्टा बाजार मिली तो पहली बार संगीतकार के रूप में पर्दे पर नाम उभरा कल्याण जी आनंद जी। इस जोड़ी के लिए और संगीत के चाहने वालों के लिए ये फिल्म एक यादगार फिल्म है। कल्याण जी आनंद जी को एक के बाद एक तीन फिल्में मिली जिनका संगीत लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। 1959 में मदारी और सट्टा बाजार।

1961 में आई थी फिल्म छलिया। फिल्म छलिया का निर्माण किया था सुभाष देसाई ने और इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। राज कपूर और नूतन की इसमें जोड़ी थी। छलिया में

0: दोनों ही फिल्मों का संगीत जबरदस्त हिट रहा और कल्याण जी आनंद जी के जोड़ी का शुमार अव्वल दर्जे के संगीतकारों में होने लगा। इस जोड़ी ने फिल्म संगीत में जो वैरायटी दी है वो कमाल की है। देशभक्ति के जज्बे से लबरेज उपकार फिल्म का ये गाना देश गान के रूप में जैसे पूजा जाता है।
1: बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं,
2: जीवन का राग सुनाते हैं,
1: गम को सुदूर हो जाता है खुशियों के कमल।

0: ये आकाशवाणी सागर है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार।
1: पुनः स्वागत है आप सभी का मनोपचार सुखी संसार कार्यक्रम में। मैं हूँ मनोज सक्सेना। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के मनोरोगों पर। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि लोगों को जो आवाजें सुनाई देती हैं, वह एक बड़ा ही घातक मानसिक रोग है। हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी, जो कि भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ हैं और काउंसलर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार श्रोताओं।
1: जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कान में आवाजें सुनाई देती हैं जी। उस एपिसोड को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि आवाज आ रही है पर व्यक्ति खुद भी बड़बड़ा रहा है, रिप्लाई कर रहा है
2: जी,
1: तो ये क्या कनेक्टिविटी है? हमने किसी की आवाज को सुन लिया
2: जी,
1: या तो हम मौन होंगे और जाकर के सीधा उसकी बात को मान लेंगे, या वो करने लगेंगे, या हम बड़बड़ाना शुरू कर देंगे
2: जी।
1: ये क्या है सर?
2: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्योंकि सिर्फ मन ही मन बातें करना या होंठ चलते रहते हैं किसी व्यक्ति के, तो इसको अपन सीधे सोच लें कि ये साइकोसिस का सिम्टम है कि उसको बाहर से आवाजें आ रही हैं, कोई नहीं होते हुए भी सुनाई दे रहा है और उसको वो जवाब दे रहा है। तो वो हमेशा ऐसा नहीं है। मैंने उसमें भी बोला था कि कई तरह से होता है। कई बार खुद के विचार सुनाई देते हैं, कई बार कोई आपसे बात कर रहा है वैसा सुनाई देता है, तो फिर ऐसे जो कोई बात कर रहा है तो उसका जवाब देता है व्यक्ति। तो उसमें क्या है, आप बैठे हैं, चार लोग बैठे हैं, वो अचानक कुछ भी जवाब दे रहा है ऐसा फिर आपको लगता है, और वो साथ में इशारे भी करता है कि जैसे सही में कोई सामने बैठा है और उससे बात कर रहा है। अकेले में छोड़िए ऐसे व्यक्ति को, तो वो एक एक दिशा में देखते हुए या हाथ पैर चलाते हुए वो बातें कर रहा है। कई बार चिल्ला भी रहा है, कई बार रो भी रहा है, कई बार हंस रहा है, कई बार मंद मंद मुस्कुरा रहा है ना। तो ये जो है ये साइकोटिक सिम्टम है, एक पहली बात जो अपन ने पिछले एपिसोड से जो। फिर कई बार जरूरी नहीं है कि मन ही मन बात करना एबनॉर्मल ही हो, जरूरी नहीं है कि ये मानसिक रोग ही हो। कुछ केसेस में जैसे कि कोई व्यक्ति गंभीर चिंतन में है तो थोड़ा बहुत जो विचार चल रहे हैं तो वो
1: बोलने लगता
2: है, अपने आप चलता रहता, पता नहीं रहता। कई बार कोई चीज मेमोराइज कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये बड़बड़ा रहा है, लेकिन व्यक्ति को कॉन्शियसली

0: कर रहा है। तो जहाँ इसमें पूछना होता है कि आपको पता रहता है क्या, आप थोड़ा सा बड़बड़ाते हैं, तो जो चिंता वाला बीमारी है या फिर डिप्रेशन वाला मरीज, वो बोलता है हाँ मैं कुछ सोचते रहता हूँ तो कभी कभी चल सकता
1: बोलता हूँ।
0: और लेकिन साइकोटिक वाले पेशेंट में बोलेगा नहीं मैं तो फला आदमी को जवाब दे रहा था।
1: अच्छा।
0: है ना? हाँ, वो बोलेगा नहीं मैं तो
1: हाँ।
0: या फिर वो जवाब ही नहीं देगा, वो उसी में बिजी रहेगा क्योंकि वो उस आवाज को सुन रहा है, आपकी आवाज पे तो ध्यान ही नहीं है उसका। फिर है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ रिचुअल्स भी करते हैं कुछ लोग इम्पोर्टेंट काम से पहले, जैसे आपने कई खिलाड़ियों को देखा होगा, कई इम्पोर्टेंट लोगों को देखा होगा कि स्टेज में जाने से पहले, तो बोलने से पहले वो मन ही मन कुछ
1: प्रैक्टिस करते
0: हैं। हाँ, वो उनका एक पैटर्न होता है अपने आप को कॉन्फिडेंस देने का।
1: अच्छा, व्यक्ति गुस्से में बड़बड़ाता है
0: जी,
1: वो क्या है?
0: गुस्से में बड़बड़ाना कई बार होता है, अपना एंगर आप किसी को डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे हो, तो गुस्से में आदमी थर्ड पर्सन को सुना देता है, अकेले में भी सुना देता है,
1: मतलब वो भी
0: ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ऐसे बड़बड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, कोई नहीं आसपास, तो समझ लीजिए कि हेलुसिनेशन का एक्टिंग आउट हो रहा है, जो आवाजें थी उसको जवाब दे रहा है, कोई है या कोई थर्ड पर्सन बगल में है, उसी से लड़ाई चल रही, उसको ना देख के आप तीसरी तरफ देख के बोला, मतलब अपना वेंटिलेट कर रहा है किसी टेंशन को, वो टेंशन वाला व्यक्ति आसपास है तो वो जायज है, ठीक है। अब कोई है ही नहीं, अकेला है आदमी
1: जी,
0: तब कर रहा है तो फिर वो मानसिक रोग है।
2: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, न्यूरो मनोचिकित्सा क्लिनिक भोपाल, मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर, मिर्गी, सिर दर्द, नसों के दर्द, सभी तरह की मानसिक एवं व्यावहारिक समस्याओं, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के निदान हेतु संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9406925768, हमीदिया हॉस्पिटल के सामने, 27 न्यू ताज मार्केट एवं 11 ऋषि कॉम्प्लेक्स, DIG बंगला चौराहा, भोपाल।
3: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत अब आपके आसपास के क्षेत्र बाड़ी बरेली, उदयपुरा और बीना में भी उपलब्ध है।
1: अच्छा, ये तो हुई चेतन अवस्था की बात, सोते हुए भी लोग बड़बड़ाते हैं।
0: हाँ, नींद में बड़बड़ाना कई बार क्या होता है, अपने को सपने याद भी नहीं रहते, व्यक्ति नींद में है और कुछ सपना चल रहा है, उसमें बड़बड़ाना तो नॉर्मल बात है, वो एबनॉर्मल नहीं है क्योंकि व्यक्ति को याद ही नहीं है। मानसिक रोग तब है जब या तो वो बोले कि मैं चिंता में बोलता हूँ खुद ही कॉन्शियसली, या फिर वो किसी आवाज को रिप्लाई कर रहा है और मान रहा है कि वो आवाज सच्ची है, तो वो मानसिक रोग होता है।
1: मैंने देखा है मेनिया से जो पीड़ित लोग होते हैं
0: जी,
1: वो सड़कों पर हैं, बड़बड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसको हम गंभीर माने?
0: हाँ, उसमें क्या होता है कि आदमी के अंदर इतनी उत्तेजना आती बात करने की कि आपने एक बात शुरू की, उसका जवाब वो दे दिया, उसके बाद वो फ्लो चलते रहता है।
1: अच्छा,
0: वो रोक नहीं पाता है कि एक बार वो रेडियो चालू हुआ उसका तो वो उसमें कंट्रोल नहीं, एक टॉपिक से दूसरा तीसरा, तो वो ज्यादा बातें करना हो गया और व्यक्ति चला गया तब भी वो बोल रहा है, वो मैनिया में आपने उन्माद में बोला कि उसमें क्या अति उत्तेजना में अति बातें करता है व्यक्ति, वो भी एक तरह का बड़बड़ाने में ही
1: बड़बड़ाना है। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति चेतन अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है, मन ही मन बातें कर रहा है, बुदबुदा रहा है, और उससे पूछो तो उसे पता भी नहीं है उसने क्या बोला, ये परिस्थिति जो है मानसिक रोग में आएगी
0: जी।
1: इसके इलाज की भी बात करते हैं।
0: देखिए, जैसी जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं, घर वालों से पूछते हैं, क्योंकि मरीज कुछ बोलेगा, घर वालों का ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर आप भी जब मरीज को देख रहे हैं तब आप समझ जाते हैं कि हेलुसिनेशन की वजह से हो रहा है या एंजाइटी की वजह से। आपने सवाल पूछा, व्यक्ति मुंडी नीचे करके कुछ सोच समझ के बड़बड़ा के फिर जवाब दे रहा है क्या, या फिर वो दे ही नहीं रहा है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरह की बीमारी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। वो एक्सपर्ट का काम है, वो आम आदमी या आम डॉक्टर नहीं समझ पाते, क्योंकि हर बड़बड़ाने को आप साइकोसिस नहीं बोल सकते,
1: बिल्कुल सच
0: है ना। तो जैसा भी उसकी डायग्नोसिस आएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इलाज होगा कि भाई साल छः महीने दो साल उसका इलाज होगा, मन शांत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आदमी नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साइको या मैनिया में आप बता रहे थे कि बाइपोलर डिसऑर्डर में, उन्माद या मैनिया में, तो उसकी भाई प्रेशर ऑफ स्पीच आ रही है, उसको बहुत ज्यादा बोलने का मन, तो हम लोग जनरली ऐसे व्यक्ति को ज्यादा स्टिमुलस नहीं देते, उसकी ही सुनते हैं, वो सारी चीजें खुद ही बता देता है, तो फिर दवाइयों से ही
1: कंट्रोल होता है,
0: मूड उसका जो हाइपर हो रखा है तो नॉर्मल पे आता है, वो समझ पाता है और वो बाद में रियलाइज भी करता है कि यार उस समय बहुत तेजी से भाग रहा, विचार ही उसको इतने तेज आते हैं, तो वो उसको निकालता है। साइकोटिक पेशेंट में हो सकता है कि वो भूल

0: जाएगी, ये आवाजें आती थी इसलिए मैं बोलता था। ठीक होने के बाद पेशेंट को याद नहीं भी रह सकता है, सीवियर साइकोटिक पेशेंट्स को, कि उसने क्या हरकतें की, क्या करता था, तो उसको याद दिलाना भी नहीं होता है कि हाँ भाई बीमारी थी, सपना सा चल रहा था, तो इसीलिए हुआ था। उसे एग्जैक्टली याद नहीं रहता उसने क्या क्या बोला, क्या किया, ध्यान नहीं रहता। तो वो साइकोटिक पेशेंट में फिर लंबा इलाज चलता है और एंटी साइकोटिक्स, यदि डिप्रेशन भी साथ में है तो एंटी डिप्रेशन या नींद की गोलियां, ये सब देते देते धीरे धीरे फिर ये उसका माइंड रिलैक्स होता है, उसका कॉन्शियसनेस अच्छा होता है, तो फिर वो ये आवाज़ें आना बंद होती हैं, बड़बड़ाना बंद हो जाता है। लेकिन साइकोटिक पेशेंट में जिनमें आवाज़ें सुनाई देती थी, शक करते थे या बड़बड़ाते थे, उनमें इलाज इतने जल्दी बंद नहीं होता है। इसलिए हाँ, डॉक्टरी सलाह के बिना ना दवाइयाँ कम करनी चाहिए ना ही बंद करनी चाहिए।
1: वाकई सर बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि मिर्गी आने के दौरा आने के बाद में
0: समय भी होता है
1: ऐसा करने लगता है,
0: मिर्गी से जस्ट निकल के आता है तो व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में होता है, उस समय भी व्यक्ति को हेलुसिनेशन हो सकते हैं या वो कन्फ्यूजन है, उसको वो पहचान नहीं रहा है लोगों को कहाँ है क्या है, तो वो उस समय भी बड़बड़ा सकता है या डर गया है, तो पोस्टिक्टल कन्फ्यूजन होता है उसमें, या पोस्टिक्टल कुछ सिम्टम हेलुसिनेशन के या आ सकते हैं, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। कई बार होता है कि बार बार मिर्गी आने के बाद ये स्थायी साइकोटिक बीमारी भी बन सकती है, जैसे मैंने बताया था कि मिर्गी की बीमारी के साथ मानसिक रोग होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेन में ही तो स्ट्राइक हो रही है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो रही है, तो कुछ ना कुछ बदलाव आता है, तो दवाइयों से दोनों चीजें कंट्रोल हो जाती है, मिर्गी भी और वो चीज भी।
1: मित्रों हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी से। आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, सीधा फोन भी कर सकते हैं, नंबर है 9406925768, नंबर फिर सुन लें 9406925768। अब मिलेंगे हम आपसे अगले सोमवार, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत का नमस्कार।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार, ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे भोपाल केंद्र से दिले की चिट्ठी।

0: कहानी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख अभिनय गोयल का है, वाचन स्वर अभिषेक कटियार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख है अभिनव गोयल का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं किसानों से संवाद की, जिसके तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जबकि ये कार्यक्रम नई मंडी परिसर में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आधुनिक कृषि तकनीकों का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा तथा किसानों और मेधावी छात्रों का सम्मान भी किया जाएगा। किसानों के बाद अब बात करते हैं सामाजिक एकता की, जिसके तहत दतिया में संत रविदास जी की संकल्प यात्रा और माटी कलश वंदन यात्रा जारी है। 20 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा गांवों और शहरों से गुजर रही है, जिसका मकसद सामाजिक एकता और समरसता का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी हो रही है। अब बात करते हैं प्रशासन की गतिविधियों पर। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सेवड़ा स्थित सिविल अस्पताल का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसव कक्ष, एनआरसी वार्ड और ओपीडी की व्यवस्थाएं देखी। मरीजों को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए गए और सेवड़ा तथा इंदरगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन करने को भी कहा गया है। इसके अलावा कलेक्टर ने सेवड़ा में लोगों की समस्याएं भी सुनी। सेवड़ा में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में जन सुनवाई में 150 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। अधिकारियों को शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। युवाओं को स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं दूसरी तरफ बारिश के बीच

0: प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए दतिया में बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है। ये कक्ष 15 अक्टूबर तक 24 घंटे काम करेगा। आपदा से जुड़ी सूचना 07522235100 पर दी जा सकेगी। नंबर एक बार पुनः सुन लें, आपदा से जुड़ी कोई भी सूचना 07522235100 पर दे सकते हैं। अलग अलग शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बारिश के साथ मच्छरों से बचाव भी जरूरी है। विश्व मच्छर दिवस पर बीते दिनों दतिया में जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को मलेरिया और डेंगू से बचाव की जानकारी दी गई। घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की गई। वहीं स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक किया गया। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया की। जिले में सभी पेंशन हितग्राहियों की आधार आधारित ईकेवाईसी पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। बायोमेट्रिक से ईकेवाईसी नहीं होने पर फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये काम 30 अगस्त तक पूरा करने को कहा गया है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर है। इंदरगढ़ के युवा उद्यमी प्रिंस सावला को उद्योग शुरू करने के लिए 80 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया गया है। उन्हें जन कल्याण शिविर में स्वीकृति पत्र दिया गया। प्रिंस उद्योग शुरू कर खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरे युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। पंचायत स्तर पर भी वहीं एक बड़ी बैठक होने वाली है। 25 अगस्त को जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये सम्मेलन जिला पंचायत के नए हॉल में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जिसमें पंच, सरपंच और जनपद पंचायतों के पदाधिकारी शामिल होंगे। अब रुक करते हैं दतिया की सियासत का। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को करीब 6,000 वोटों से हराया। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां जश्न मनाया, वहीं बीजेपी ने नतीजे की समीक्षा की बात कही। अब एक ऐसी पहल जिसकी चर्चा प्रदेश के बाहर भी हुई। दतिया के नशा मुक्ति अभियान की केंद्र सरकार ने तारीफ की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसे दूसरे जिलों के लिए मॉडल बताया है। इस अभियान में जागरूकता के साथ नशे के आदि लोगों के पुनर्वास पर भी जोर दिया गया। वहीं देशभक्ति के रंग बिरंगी तस्वीर भी जिले से देखने को मिली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीते दिनों गांवों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों ने इसमें उत्साह से हिस्सा लिया। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह भी दतिया जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब एक जरूरी जानकारी। दतिया में बेहतर काम करने वाले किसानों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में ब्लॉक और जिला स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दतिया से मुंबई की चैत्य भूमि की यात्रा की जाएगी। ये यात्रा 15 से 18 सितम्बर तक चलेगी, जिसके लिए 24 अगस्त से 9 सितम्बर तक आवेदन किए जा सकते हैं। और आखिर में बच्चों से जुड़ी एक खबर। जिले के लिटिल फ्लावर स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र ने बच्चों को मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। उन्होंने स्क्रीन टाइम को सीमित रखने और तकनीक का सही इस्तेमाल करने की अपील बच्चों से की। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फोन करें, लोकगीत सुनें।

0: जय शिखर भैया, चारों तरफ रिमझिम रिमझिम फुहारें गिर रही हैं और मन बेजा प्रसन्न चित्त कहानो।
1: भैया सभी इंतजार करते रहे थे कि जब फुहारें अच्छे से पड़े कि मन से लेके तन से लेके सब जगह भीग जाएं अपन।
0: जय शिखर भैया, सबसे पहले तमाम श्रोता भैया रखो ऐसे प्यारी मौसम में कार्यक्रम से जुड़े भी बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे हैं सभी को।
1: और स्वीकार करो भैया हम दोइयों की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम। और लेते हैं भैया जो पहलो फोन। हेलो
2: हेलो जी सर, नमस्कार।
1: भैया, स्वागत है आपको फोन करें लोकगीत सुने में। अपनो नाम बताओ।
2: हम बलराम पाल बोल रहे हैं पंडुखर धाम से।
1: क्या कर रहे हो आप?
2: अब फिलहाल तो बकरियां चरा रहा है वैसे।
1: अच्छा, कितने नग हैं भैया बकरियों के?
2: 12 नग हैं।
1: तो भैया इनको कहाँ चरावे ले जाते हो, अपने जंगल में के कहूँ अपने घर पे ही पालत हो?
2: नहीं, जंगल है थोड़ा सा।
1: हाँ हाँ,
2: वो तो ले जाते।
1: बहुत ही अच्छी बात है, पशुपालन भी कर रहे हो और खेतीबाड़ी?
2: खेती बाड़ी है सर।
1: क्या बात है भैया, बहुत ही अच्छे किसान कहलाए आप, प्रगतिशील किसान कहलाए।
2: सर

0: बीघा में धान है सर, 7 बीघा में तिली है।
1: अच्छा अच्छा, तो इतना पानी मिल जाता भैया उधर?
0: पानी है नहीं, ट्यूबवेल है अपना।
1: बहुत ही अच्छी बात है भैया। भैया आप जाना दो कि हमारे ये कार्यक्रम में पूछा थे एक अटका।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ए बार को अटका कह रहा है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला उड़े खड़ी थी।
0: गाजर तो नहीं है सर?
1: नहीं भैया। चलो भैया लोकगीत बताओ, कौन सा सुनवा दे मैं?
0: कोई भी कलाकार की आवाज में कजरी सुनवा दो सर।
1: ठीक है भैया, और आओ भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे जा कजरी। इखो गाई है सुशीला देवी और उनकी सखी।

अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ।

0: राखो चाहिए अपन को कछु इन बातों पे। आप हमारे श्रोता भैया से कछु के हो?
1: अभी तो जैसे अपन पानी है तो पानी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, साफ पानी पिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी पानी की वजह से ही होती है बरसात में। और जैसे ताजा ही खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए।
0: चलो रानी बिन्ना ने बहुत अच्छी बात तमाम हमारे श्रोता भैया और बिन्ना हरों को बता दी स्वास्थ्य से जुड़ी। भाई रानी बिन्ना कछु और हमारे श्रोता भैयारों से कहो चाहत हो आकाशवाणी की श्रोता भैयारों से?
1: हाँ यही के सारे आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम अच्छे आते हैं और हमें इनसे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब अपने खाली समय में सुनने में सही रहता है। हाँ जैसे युवा वाणी है, इससे बच्चों को भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं सुनने को, और अब कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिलता है आकाशवाणी से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही ज्ञान आप भी लेते रहो और आपकी केवी पे हमारे तमाम श्रोता भैया हरे जो है जुड़े रहे आकाशवाणी सागर से। रानी बिन्ना अब आ रहे हैं अपन अपने कार्यक्रम की परंपरा यानी अटका पे।
1: जी
0: आज को अटका आपसे कह रहा है, हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला उड़े खड़ी थी।
1: मक्का।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रानी बिन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और रानी बिन्ना अब अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दूं।
1: जी अभी तो सावन चल रहा है तो कृष्ण गोपाल दुबे का गीत सुनना है।
0: बिल्कुल आपकी फरमाइश पे सुनने ले रहे। और रानी बिन्ना ऐसे ही जुड़ी रही हो आकाशवाणी सागर से। रानी बिन्ना बहुत
1: जी,
0: बहुत धन्यवाद।
1: जी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो।
3: हेलो सर, नमस्ते।
2: नमस्ते भैया, फोन करें लोकगीत सुने में खूबे खूब स्वागत है आपको। अपना नाम बता दो।
3: हाँ सर, हम बोल रहे हैं आपके लिए श्रोता कामता प्रसाद दवे।
2: कामता भैया, कछु बताओ, कोई नई घटना भाई हो या अच्छी बात भाई हो, और बारिश के हालचाल कहाँ जी, सारी जानकारी दो आप। तो
3: बारिश तो सर ऐसा कम हो रही है।
2: हाँ हाँ,
3: फसल के हिसाब से सही है, वहाँ देखिए है।
2: धबोली भैया कहाँ पड़ा थे आपको?
3: जब धबोली पड़ा था सर, सायपुर है, गणेशगंज स्टेशन के पास सायपुर।
2: हाँ हाँ हाँ,
3: सायपुर से एक रोड आओ पश्चिम साइड से 4-5 किलोमीटर के लगभग।
2: अच्छा, अच्छा। तो भैया हम आपसे पूछ रहे हैं अटका।
3: पूछो सर।
2: अटका कह रहा है कि हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, और राजा जू के बाग में दुशाला ओले खड़ी थी।
3: मकर को घूमता था नहीं सर।
2: बिल्कुल सही कह रहा है भैया। और अब बता दो फरमाइश।
3: हाँ, कोई झूले की सुनवा दो सर, अब सावन को महीना चल रहा है।
2: तो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे, उर्मिला पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो
3: हेलो,
2: स्वागत कर रहे हैं आपको, फोन करें लोग की सुने कार्यक्रम में।
3: जी सर, पत्रकारिया कारकार से बोल रहा बूढ़े महाराज।
2: सुना बूढ़े भैया, क्या चल रहा हो बे?
3: कुछ नहीं सर, खेती किसानी के चल रहा है, पानी गिर रहा, रेम झेम बैठे ही हैं आज तो।
2: तो अच्छो ही तो गिर रहा यार, पानी रेम झेम गिर रहा। फसलें कैसी कहाँ हैं?
3: फसलें तो ठीक है सर।
2: आसो देखो, सोयाबीन को भी खासो फायदा ही कहा नो, कैसे एकदम से पानी नहीं गिरू है
3: सर। बीच में झटका तो खागा थोड़ा भी।
2: अब आज देखो, थोड़ो बहुत कछु न कछु प्रकृति जो है अपने हिसाब से कार्य करत है, अपने वस्तु पे है नहीं
3: है। नहीं सर, जो तो बात सही हो।
2: भूरे भैया, कछु और सुनाओ अपने गांव के बारे में।
3: ठीक है सर, के कार्यक्रम तो कछु और बताऊते हम
2: तो। बढ़िया, चारों तरफ हरियाली तो हो गई हुई है सावन के महीना में।
3: हरे आज तो चार ही करती है सर।
2: छोटी मोटी कोई नदियाँ तालाब नारो
3: कछु? तालाब कुछ नहीं है सर हमारे यहाँ।
2: चलो ठीक है, पहाड़ है थोड़ो बहुत?
3: पहाड़ तो है तना दूर।
2: तो इन दिनों दूर से पहाड़ देखियो, कितनो अच्छो लगा थे, हरो भरो एकदम, मन प्रसन्न हो जात देख के।
3: जी सर।
2: बस तो सब कछु कहानो आपके गांव में। चलो सहदेव भैया, अपने कार्यक्रम की अपन एक परंपरा रखे हैं अटका की।
3: जी सर, बना है तो बताएं।
2: बिल्कुल, आज एक हरो भरो सो अटका और यही सीजन को है जो उत्तरी को। चलो आज को अटका आपसे कह रहा हूँ। हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला उड़े खड़ी थी।
3: तो नहीं आ रहा
2: हूँ। नहीं आ रहा
3: हूँ? नहीं।
2: चलो कोई बात नहीं। भूरे भैया, अपनी फरमाइश और हम तक भेज दो।
3: राजी पटेल को सुनवाज।
2: बिल्कुल, आपकी फरमाइश पे सुन रहे हैं जो बहुत ही प्यारो सो लोक गीत। भूरे भैया आकाशवाणी से ऐसे ही जुड़े रहने हैं, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: भैया, फोन करें, लोग ही सुने।
1: हम सैदपुरी से बोल रहे, रामराज सिंह राजपूत।
0: तो का कर रहे हो भैया आप?
1: ढोरों बछेरों को करा थे भैया से राखे हैं।
0: अच्छी बात है भैया, भैंसों के लाने डॉक्टर को दिखाऊं थो के अपने मन से दवाई वाई देते रहे थो? हाँ
1: हाँ, डॉक्टर हम दिखाते रहे थे, बिल्लियाँ राई की आते रहे थे। और
0: अच्छी बात है भैया। और खेती की बाड़ी?
1: खेती भी करा, खेताई पर रहे थे, भैंसे बांधे रहे थे ढोर बछेरू।
0: अरे गजब भैया, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप।
1: चार पांच गायें हैं, दो तीन भैंसे हैं
0: हाँ,
1: और दूध जात बिकवे
0: कहाँ जाऊ थे भैया?
1: ऐसा गांव में है डेरी।
0: तो भैया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
1: आओ
0: अटका बहुत ही सरल है, कह रहा हूँ कि हरी हती मन भरी हती,
1: आओ,
0: लाखों मोती जड़ी थी, और राजा जू के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी।
1: जो अटका तो सर
0: हाँ
1: सियाने आदमी पहले कहते ध्यान तो नहीं, मकाया बन जा।
0: चलो भैया, सही कह रहे हो। तो अब बता दो भैया, लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
1: शेरों सुना दीजिए, ता उनको मायने लगो।
0: हाँ।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार। पठारी से सुनील सेन बोल रहे हैं जी। फोन करें लोग जी सुने
0: बिल्कुल सुनील भैया, आपको गांव पठारी जो कहाँ पड़त कहा?
1: जी। अपने खुरई से पास है, दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे अच्छे भोलेनाथ जी हैं, भीम गदा हैं,
0: भैया राहतगढ़ से भी है स्थान जावे?
1: राहतगढ़ से भी है, अपनी खुराई से 20 किलोमीटर पड़ता है, और गंजवासदा से 36 किलोमीटर, मंडी वोरा से 23 किलोमीटर।
0: बहुत बढ़िया सुनील भैया, बताओ पठारी के बारे में कछु का और खास है, ऐसो कछु और विशेषता ऐसी है?
1: पठारी में बहुत दर्शनीय स्थल है। जो पांडव थे ना, उनने भीम गदा की स्थापना की है। पहाड़ पे गैयानाथ जी, भोलेनाथ जी हैं। बहुत रमणीय स्थान है, दर्शनीय कहना चाहिए, और धार्मिक स्थान पठारी में बहुत है।
0: चलो तो हमारे सुनील भैया कछु आकाशवाणी के श्रोता भैयाहरों से कहो चाहत हैं का?
1: बिल्कुल, आकाशवाणी बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक और कहना चाहिए आज के समय में होना चाहिए वो चीजें आकाशवाणी दे रही है। जागरूकता के लाजे भी, वो के लाजे हम भी आकाशवाणी को आभार व्यक्त करते हैं। अच्छे मनोरंजक कार्यक्रम, खेती बाड़ी के भी सब ज्ञानवर्धक सभी कार्यक्रम अच्छे आते हैं।
0: बहुत बढ़िया सुनील भैया, आपकी बात तमाम श्रोता भैया सुन रहे हैं, और जो नए जुड़े श्रोता हैं वे भी सुन रहे हैं और वे भी आगे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया।
1: जी जी
0: सुनील भैया अब आ रहे हैं अपने कार्यक्रम की परंपरा यानी अटका पे।
1: जी
0: आज को अटका आपसे कह रहा हूँ तो, हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला उड़े खड़ी थी।
1: थोड़ा सा

0: भाई साहब संकेत दें।
1: बिल्कुल यही सीजन की चीज है, बड़े चाव से खाते हैं अपन।
0: जी मक्का तो नहीं है बाबू जी।
1: बहुत बढ़िया सुनील भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, अटका को सही जवाब दे भी, अब लगी हाथ अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दूं।
0: चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में थी।
1: चलो चंद्रभूषण पाठक जी को गाओ भाई, बहुत ही प्यारा सो लोकगीत हम सुनील भैया की फरमाइश पे सभी जने मिल के सुने लेते हैं। सुनील भैया ऐसे ही जुड़े रही हो आकाशवाणी सागर से, आपको फोन कार्यक्रम में प्राप्त भाव बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक दिन आपस में

0: भैया फोन करें, लोक गीत सुने।
1: हाँ जी साहब।
0: अपना नाम बता दो।
1: ग्राम गड़र कल्याण से।
0: गड़र कहाँ पे है?
1: छापरी से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में।
0: अच्छी बात है भैया। कर का रहे हो भैया आप? उते
1: हम होते अब खेती किसानी कर रहे गाँव पे।
0: वो पशुपालन भी है कि नहीं?
1: गैया है 2 ढज्जा।
0: चलो भैया अच्छी बात है। कम से कम भैया अपने घर को दूध दही मीठा मिल जाऊ थी आपको?
1: हाँ मिलत है साहब।
0: और बताओ भैया बारिश के क्या हालचाल हैं?
1: पानी अच्छा गया 3-4 दिन से गिरो है पानी।
0: हाँ बस अभी 3-4 ही दिन से गिर रहे हो हैं।
1: हाँ हाँ।
0: और अब हम आपसे पूछ रहे हैं अटका।
1: बोलिए साहब।
0: अटका कह रहा हो कि हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जू के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी।
1: मका को भुंडा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अब बता दो फरमाइश
1: रामचरण यादव को।
0: चलो सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे रामचरण यादव को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो,
1: हेलो
0: स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने में।
1: बरखेरा से बोल रहे सर उदय सिंह।
0: उदय भैया सुनाओ, बरखेरा कहाँ पड़ा थे जो अपनों गांव?
1: जो है गुगर बरोदा के राजघाट के ऊपर। सर
0: तो का देखने लायक है अपने गांव में कछु? मैं श्रोता भैया रहा हूँ, बताओ।
1: मंदिर है हमारे तो बहुत पुराना। नदी
0: चलो, और कछु नदी तालाब ऐसी कछु चीजें तो और हुई है ना?
1: नहीं राजघाट है सर।
0: अच्छा, लिंगा है राजघाट,
1: हाँ
0: माने किसानी को पानी तो पर्याप्त तो मिल जाती है।
1: और तला बंदो एक जमुनिया में बढ़ो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो भैया हम आपसे पानी के बारे में पूछ रहे हैं, खेती किसानी हो चाहे आम जनजीवन में पानी की जरूरत हो, अपन को पानी बहुत महत्तम की चीज है, माने जीवन ही है जल से।
1: जी सर।
0: तो एको कैसो उपयोग अपन को करो चाहिए,
1: तो नहर चला थे सर।
0: तो कैसो उपयोग करत किसानी में पानी कैसो देत हो?
1: ये प्याज लगा था तो प्याज ही खुद
0: खुल्लो
1: हाँ
0: पानी देत? तो भैया बस जैया हम आपसे जानवो चाह रहे थे, किसानी में अपने कृषि के विशेषज्ञ बताते हैं कि साग सब्जी फसलों में, दीगर फसलों में टपक सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन है
1: और
0: या
1: जरा भी लगो है।
0: चिरइयों के माध्यम

0: से,
1: जी सर,
0: तो इन माध्यमों से पानी देवी से जो है पानी जितनो जरूरी है उतना ही पहुँचे थे और व्यर्थ नहीं बह पात।
1: जी सर,
0: चलो उदय भैया की माध्यम से जब बात सब तक पहुंची और सब ये बात को ध्यान रखें कि पानी को अपव्यय नहीं करने, व्यर्थ बर्बाद नहीं करने। चलो उदय भैया अब आ रहे हैं अपने कार्यक्रम की परंपरा अटका पे, तैयार हो?
1: जी।
0: आज को अटका हमारे उदय भैया से कह रहे हो, हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी की बाग में दुशाला ओढ़ी खड़ी थी।
1: जी सब हम पर नहीं बन रहा,
0: नहीं आ रहा हो? चलो कोई बात नहीं, कार्यक्रम के आखिर में आपको जवाब पता लग जाए है। उदय भैया अपनी फरमाइश और हम तक पहुंचा दूं।
1: देशराज पटेरिया को।
0: बिल्कुल आपकी फरमाइश पे सुनते हैं देशराज पटेरिया को गाव जो बहुत ही प्यारो सो लोकगीत। उदय भैया ऐसे ही जुड़े रहने आकाशवाणी सागर से, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, जय सिया राम सर जी।
0: जय श्री राम भैया, फोन करें लोक गीत सुनने में स्वागत है आपको।
1: हाँ जी, हम सुरेश राजपूत बोल रहे हैं, ग्राम तुमड़ा, जिला नरसिंहपुर से।
0: नरसिंहपुर में भैया, हम रेडियो कैसे सुन पाऊ थो आप?
1: सर जी, मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पे सुनते हैं।
0: अच्छा, भैया तो कछु अपने बारे में परिचय दो अपनो पूरो।
1: हाँ जी, अब हम का है सर जी, खेती से भी जुड़े हैं और हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करते हैं।
0: अच्छा, भैया बहुत ही अच्छी बात है भैया। तो भैया अब
1: जी
0: हम आपसे पूछ रहे हैं अटका।
1: हाँ जी, अब आप अटका तो पूछ लो, मनो अब बता दें, भगवान भरोसे बन जाए तो।
0: बने ये है वो
1: जी बन जाए तो बते हैं।
0: तो अटका कह रहे हो भैया कि हरी हती मन भरी हती, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जू के बाग में दुशाला उड़े खड़ी थी।
1: जी, तो ये मक्के का भुट्टा तो नहीं है सर?
0: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
1: सोनी लाल को गाओ, तो भजन सुना दो सर जी। जय
0: चल
1: सियाराम सर जी।
0: चलो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे, सोनी लाल को गाओ भाव जो भजन।

0: जय शेखर भैया, आज हमारे तमाम श्रोता भैया बिन्ना हरे इतने नौने प्यारे से और परंपरागत अटका में थोड़े से अटके भी वो बहुत सारे भैया ने जवाब भी दे
1: दो। बिल्कुल भैया,
0: देखो कितनो अच्छो अटका है। तो श्रोता भैया हरो, हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला उड़े खड़ी थी।
1: भैया लगभग सभी श्रोताओं ने एक दो घों छोड़ गए सही जवाब दे रहा है, भुट्टा या मक्का। भैया वे हरे हरे दाने रहे थे, बहुत सारे दाने रहे थे, जीखों गिन नहीं पाऊ थे, और दुशाला यानी हरे कपड़ा ओढ़ के वो खड़ी रहे थे तो खेतों में। तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, ऐसे ही अगर आपके पास भी पारंपरिक अटका हो तो हमको व्हाट्सएप पे ज़रूर लिख के भेजो। व्हाट्सएप पे जब आप हमें भेजो तो भैया एक प्रयास करियो, एक कोशिश करियो कि जो अटका आकाशवाणी से सुनाए गए हैं उनको अपने नाम के संगे लिख के नहीं भेजो, वे तो हमारों के पास हैं ही। हमारे चाहते हैं कि आप कुछ नए नए अटका भेजो।
0: बिल्कुल, और अटका आपको व्हाट्सएप नंबर 97704-32297 पे भेजने हैं, संगे अपनो नाम और पूरा पता जरूर ही लिखने हैं।
1: और चिट्ठिया पे भेजे हो भैया तो चिट्ठिया के ऊपर लिख देने हैं भैया, अटका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर मध्य प्रदेश।
0: तो भैया रो, ना केवल आपकी अटकाओं की प्रतीक्षा हमारों के लाने रहने हैं, बल्कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ो, एक ही लाने भी हमारे बाट ही रहे हैं। भैया रो, आप सभी जनों की जय शेखर। भैया हमारे श्रोता भैया रो को आकाशवाणी सागर की फोन नंबर और बता दूं ताकि वे भी ये कार्यक्रम से जुड़ सके।
1: भैया रो, सागर को फोन नंबर है 240-845 और ई के पहले भैया सागर को एसटीडी कोड लगा वो बिल्कुल नहीं भूलने हैं, जो है 0-75-82।
0: आज के अपने एक कार्यक्रम की प्रस्तुति रही जय शेखर की, और आप तमाम श्रोता भैया बिन्ना

अभी श्रोता सुन रहे थे फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम। श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे कि आज शाम 4 बजे फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम के लिए फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। आप भी हमें फोन लगा सकते हैं 240-845 पर। सागर का STD कोड है 0-75-82। तो याद रखें आज शाम 4 बजे।

ये आकाशवाणी सागर है। सुबह की 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
1: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
1: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
1: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोध की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागू को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागू जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागू ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान

0: बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे एमपी गणेश और बीपी गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
0: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
0: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए
1: जी। और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी, बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ

0: छीलिया।
1: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
1: क्या 20 करोड़ साल?
2: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
1: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
2: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित, तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
2: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
2: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
2: देखो, विशाल और शांत महासागर, ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
2: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
2: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
2: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
2: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इस

0: इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं

0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: ये किस तरह की मूर्ति है?
7: ऐसी मूर्ति तो मैंने
8: वाओ वंडरफुल।
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
9: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
6: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
2: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
3: उस मूर्तिकार ने बताया,
10: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख

0: फैलाकर उड़ जाता है।
1: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
2: ग्रेट, मार्वेलस।
3: हाँ, अफसर ऐसा ही होता है।
2: वंडरफुल।
4: हाँ, हम सहमत हैं।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है। कलाकार ने बताया,
0: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
1: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
5: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
1: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
5: कहीं ऐसा ना हो कि
1: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज शाम 4

बजे फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम के लिए, फोन पर रिकॉर्डिंग की जाएगी। आप हमें फोन लगा सकते हैं 240-845 इस नंबर पर। हमारा एसटीडी कोड 0-75-82। तो समय याद रखें, आज शाम

एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद श्रोता सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से किया जाएगा। आइए प्रतीक्षा करें।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत है ललित सेन का, एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है दिलीप वर्मन का, एल्बम का नाम है रात।

कार्यक्रम रंग तरंग की अगली और अंतिम पेशकश है तलत अजीज की आवाज में। शायर हैं इब्राहिम अश्क, धुन है फिदा हुसैन की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलोरा जिले के मुसनूरू पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है।

0: देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम और आप मिलकर याद करेंगे कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है बैराग।

साथियों, अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। नगमा निगार है इंदीवर, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है कुर्बानी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत सुनिए जिसे लिखा है अनजान ने, आवाज है किशोर कुमार की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

साथियों, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा अगला नगमा है मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, फिल्म का नाम है सफर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज की ये महफिल सजी है कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी की यादों से। तो आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है एम जी हशमत ने। फिल्म का नाम है कोरा कागज।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया
3: दिना। ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कलाकार, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत रचना है इंदिवर की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

0: नामों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया।

0: लंबा इंतजार,
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला,
1: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

धर्मात्मा, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीत को लिखा है इंदीवर ने, सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया।

0: एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मुकेश की आवाज में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है वो पढ़ के सुना देते हैं, जो हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। आपने उसे पढ़ा भी है, बहुत सारी बातें आपने हमारे विषय के संदर्भ में लिखी है। पहले आपको इबारत पढ़ के सुना देते हैं। इबारत ये है कि एक सवाल एक जवाब, हर सवाल के जवाब से उठता है एक सवाल और चलता रहता है ये सवालों का सिलसिला। दुनिया जब सवाल करती है तो लगता है क्या जवाब दें, दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे कहा, अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगे? उसने कहा, मैं तुम्हीं से पूछती हूं कि कौन हो तुम, कौन हो, ख्वाब हो या हकीकत हो। सवालों का सिलसिला एक जगह आकर ठहर जाता है, पर तभी उसने चांद से पूछ लिया, तुम छुपे हो कहाँ? चांद ने कहा, ये तो कहो कौन हो तुम। सवाल का जवाब मालूम ना हो तो हम निरुत्तर हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल का कोई जवाब नहीं है। जवाब तो है, तभी तो हम कहते हैं ये दिल की बाजी है, हम जीत ही लेंगे, खेल को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सत्यता तो ये है कि ये सवाल और ये जवाब एक मरीचिका की तरह हमारे मन में बने रहने चाहिए। तो दिन में 1 बजे यानी कि इस वक्त अभी थोड़ी देर में सवालों का जो जवाब है वो आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। एक हमारी साथी की ये बात की कि मन में छिपे सवालों को न पूछने से असमंजस और गलतफहमियां बढ़ती हैं, जिससे मन अशांत रहता है और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। खुलकर बात करने से स्पष्टता आती है, मन का बोझ कम होता है और आपसी विश्वास मजबूत होता है। संवाद न करने से, बातों को मन में रखने से दूसरों के इरादों को लेकर गलत राय बन जाती है। सही समय पर सवाल पूछने से भ्रम दूर हो जाते हैं। पारदर्शिता से रिश्तों में अपनापन और नज़दीकियाँ बढ़ती है। छोटे बच्चे कुछ सवाल कौतूहलवश या जिज्ञासा के लिए करते हैं। सही समय पर बच्चों को सही सवाल का जवाब देना चाहिए। ये बहुत मुद्दे की बात हमारे इन साथी ने लिखी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चों ने अगर कोई सवाल किया तो हमें लगता है बच्चों की बातों का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उतना ही

ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का जो मन होता है बहुत सारी बातों को उस वक्त सीख रहा होता है, और यही कारण होता है कि उसके मन में सवालों का एक उबाल सा होता है। अगर उन सवालों का सही जवाब ना मिले तो बच्चे किसी गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इसलिए बच्चों के सवालों का सही जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम गीत सुनने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गीत है ये ससुराल फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, संगीत शंकर जयकिशन का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए हमें।

एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। जी हाँ, शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना है जो जिसका जवाब आपने हमें दे दिया है। और अब हमारा सवाल ये है आपसे कि क्या आपने किसी से कोई सवाल किया है और आज तक उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया? ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सवाल व जवाब ही तो ज़िंदगी की आधी उलझन और आधा सुकून है। सवाल तलाश की आग है और जवाब उस आग पर ठहरा हुआ पानी है। हमें कभी कभी लगता है सवाल या निमृत तृष्णा है, मगर वो भी तो एक दृष्टिभ्रम है। सवाल ही तो जिज्ञासा या मनुष्य की चेतना बढ़ाता है। जवाब यानी अनुभूति उस पर गहरी शांति देकर सवाल को जीत लेता है। जीवन का सफर यूं ही चलता रहे, यही रूह का असली बहाव है। और एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं हो सकता। एक गाना भी है, हर

सवाल का जवाब नहीं मिल सकता मेरे प्यार का हिसाब, इस तरह के एक गाने का इन्होंने जिक्र किया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज की इबारत ने हमारा दिल छू लिया, सवालों के जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, पर हम भी कहते हैं कि दिल की बाजी है, जीत ही लेंगे। चलिए धन्यवाद आपका, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहु बेगम फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं, लता जी की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है, संगीत किसका है ये बताइए। और हाँ ये भी बताइएगा कि आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। रोशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना, और सचमुच कुछ सवाल जो होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं। ये हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं। जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब, वक्त। ये वक्त कब राजा को भी रंक बना देता है। सवाल सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? जवाब, ठोकर और असफलता, जो इंसान को जीवन का असली पाठ पढ़ाती। यानी सवाल भी महत्वपूर्ण होते हैं और जवाब भी। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल पूछने का जवाब तो लोग घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता है। मैं कह देती हूँ कि कुछ कुछ सवाल का जवाब वक्त भी देता है, इसलिए वक्त का इंतज़ार करो। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। एक सवाल के बाद दूसरा और फिर अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया सवाल करती है तो असमंजस होता है कि दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे सवालों का जवाब देगी, तो उसने मुझसे ही पूछ लिया कि तुम कौन हो। यानी इन्होंने इबारत में से कुछ जो बातें हैं या कुछ इनके हिसाब से जो गाने सुनवाए जाने हैं

उसके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुपमा फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। आवाज़ें हेमंत कुमार की, कैफी आजमी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्म

धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना। एक हमारे साथी की बात है कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, इसी सवाल जवाब में उलझे हुए हैं। कभी किसी को जवाब देने पर कोई उलझन न बन जाए। सवालों के जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं, कभी मौन रहकर आँखों से, हाव भाव से, कभी बगैर बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। उलझे हुए सवालों की परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह समय के साथ जवाब मिल जाएगा ये सोचकर सकारात्मकता ले आती है, फिर भी मन उलझा रहता है। एक साथी लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई शक किया जा रहा हो।

फारूक कैसर का लिखा और जीएस कोहली का संगीत बद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रही है कि सवालों की धुंध से ही तो जवाबों का सूरज उगता है, लेकिन हर रोशनी अपने पीछे एक नया साया छोड़ जाती है। हम जीवन भर जवाबों की तलाश में भटकते हैं, पर हर मिला हुआ जवाब एक नया प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब समय हमसे पूछता है कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हिसाब कर्मों का दे या भावनाओं का। मैंने एक दिन बहती नदी से पूछा, तुम थकती क्यों नहीं? उसने पलटकर मुझसे ही पूछ लिया, तुम रुकते क्यों नहीं? पहचान क्या है तुम्हारी? एक बहती हुई लहर या किनारे पर बैठा कोई अजनबी प्रश्नों का यह भंवर थमता ही नहीं।

ही है। एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ सवाल का जवाब मिल जाए, ये हर सवाल का जवाब मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे गणित के अध्यापक जो थे वो बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते थे और उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं, कमज़ोर छात्र छात्राओं को भी गणित बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। एक साथी लिख रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में एक लड़की हमें मन को भा गई थी, उसे अंतर्देशीय पत्र भेजकर शादी के लिए लिखा था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बुढ़ापे में मुलाकात हुई तो मैंने शिकायत करते हुए अंतर्देशीय पत्र का हवाला दिया तो जवाब आया कि हमें पसंद किया था तो चले आते हाथ मांगने, मेरा निर्णय मेरे माता पिता लेंगे, मैं नहीं, आप समय पर आते तो आज मैं आपके साथ होती, ये उन्होंने लिखा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि प्रायः बहुत रोचक तरीके से लोग उत्तर देते हैं, सभी हतप्रभ रह जाते हैं, पूर्ण प्रमाण के साथ उनका उत्तर देने का भाव सदैव संतुष्टि प्रदान करता है, ये इन्होंने इनकी दीदी के बारे में लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, जहाँ निसार अख्तर के बोल, एन दत्ता का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना आपने सुना, मीनू मुमताज और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों मेरे बच्चे

बचपन के शहर मुंबई का मौसम कैसा है? तो जी हाँ, हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना है और रोज़ दिन में कम से कम 5-6-10 दफ़े बारिश दस्तक देती है और पूरा शहर भिगो करके चली जाती है। ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान पर फिलहाल बादलों का कब्जा है। तो ये मुंबई शहर का मौसम है। अगर आप घूमना चाहें या देखना चाहें इस शहर को, तो मौसम वाकई अच्छा है। अब एक साथी की बात है कि सोचो, सवाल न होते तो दुनिया कितनी खाली खाली होती। सवाल हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं और जवाब हमें आश्वासन से भर देते हैं। सवाल तो एक खाली पन्ना भर है जिस पर हर जवाब वो पन्ना भर देता है। कुछ जवाब हमें जीवन में सबक के रूप में मिलते हैं तो कुछ सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं। परिपक्वता की पहचान यह नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि यह है कि आप जानते हो कि किस सवाल का जवाब देना जरूरी है और किस सवाल पर चुप रहना जरूरी है। जी हाँ, यही परिपक्वता होती है कि किस सवाल का जवाब दें, क्या जवाब दें और कितना बोलना चाहिए, कितना जवाब देना है, इसी को परिपक्वता कहते हैं। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, एक उत्तर से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। पूरा ब्रह्मांड हमारे ही भीतर की जिज्ञासाओं का एक आईना है। हम बाहर उत्तर खोजते हैं जबकि मूल प्रश्न हमारे भीतर ही जीवित रहता है। अनसुलझे सवाल जीवन की रिक्तता नहीं बल्कि उसकी निरंतरता का प्रमाण है। धन्यवाद देते हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज़, भरत व्यास के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

श्री रामचंद्र का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत गहरी और मन को छू लेने वाली है। सवाल और जवाब के इस भंवर में शब्दों को बहुत खूबसूरती से पुरोया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना हर इंसान को करना पड़ता है और ये स्थिति तब बनती है जब वो सवालों के जवाब में घिरा होता है। जीवन की इसी उधेड़बुन में निकलता है किसी को जवाब देकर, किसी का सवाल सुनकर, पर सही में उसका सवाल सही है या जवाब उसको खुद ही नहीं मिल पाता है। कुछ सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवालों से भी ज्यादा दर्द देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें किसी काम के लिए और उसी का फ़ोन आ जाए और वो खुद ही उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो हमने सोचा था, तो ऐसा भी होता है। चलिए एक सवाल हमने आपके लिए भी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और उसने उसे सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और उसने जवाब कुछ इस तरह का दिया, तो जो सवाल और जवाब का तालमेल जब नहीं बैठता है तो वातावरण में एक हंसी का ठहाका लग जाता है और हम बोलते हैं अरे हमने तो तुमसे ये बात पूछी थी, तुम तो जवाब कुछ और ही दे रहे हो। तो ऐसे भी कई बार परिस्थितियां आ जाती है, तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब तीन देवियां फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और साथियों की इसमें आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

देवानंद और सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि अभी तो बादलों से मैं पूछ रही हूँ कि कब बरसोगे, सिर्फ आसमान का मेकअप मत करो, बरस भी जाओ। और एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों का सिलसिला ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत आदत है, क्योंकि हर सवाल एक दरवाज़ा खोलता है और हर जवाब 10 नए रास्ते दिखाता है। बचपन में ये क्या है से शुरू होकर बड़े होने पर मैं कौन हूँ तक पहुँचते हम सीखते हैं कि रुकना नहीं, जिज्ञासा बनाए रखना ही असली तरक्की है। सवाल हमें विनम्र बनाते हैं और हमें सुनना सिखाते हैं और हमें दूसरों की दुनिया में झांकने की हिम्मत देते हैं। बिना सवालों की बातचीत बासी हो जाती है। जिस दिन मन से सवाल उठने बंद हो जाते हैं उसी दिन से समझ और जिज्ञासा भी नष्ट होने लगती है। इसलिए सवाल पूछते रहो, कोई सवाल करे तो उसके उचित जवाब देते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक साथी लिख रहे हैं कि ज़िंदगी में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, यही अधूरेपन का एहसास और खोज की ये बेचैनी ही हमारी यात्रा का मुख्य हिस्सा बन जाती है। जीवन के अनसुलझे पहलू, कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती, उत्तर न मिलने पर भी जीना ही अनुभव है। जीवन में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब न तलाशना और अनिश्चितता को स्वीकार करना कई बार मानसिक शांति और आत्मिक सुकून बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका साबित होता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब अब्दुल्ला फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ या आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

संजय खान और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि एक बार हमारे चाचा जी ने हमारे छोटे भाई से पूछा कि भैया, यानी ये भैया शब्द उन्होंने पिताजी के बारे में कहा था, कि भैया के विवाह में आपने डांस किया था, तो उसने अपने बड़े भैया के विवाह के संदर्भ में हाँ कहा और सब लोग हंस पड़े और इस तरह से एक हंसी का माहौल बन गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ और सोच रहे होते हैं और कोई सवाल करता है तो हम बिना उसकी बात समझे जवाब दे देते हैं, बात बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने तो ये गलत जवाब दिया, फिर सॉरी बोलकर सही जवाब दे देते हैं और सबके जवाब भी कितने अलग होते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिसाब के सवालों से डर लगता था, कभी गार्जियन कुछ कड़क की पूछे तो डर लगा, पर सबसे ज़्यादा डर लगता था जब शादी के पहले लड़कियों से लोग मिलने जाते और तरह तरह के उटपटांग सवाल एक पर एक दाग देते हैं तो ये बड़ा अजीब लगता है। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं, जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब। वक्त, ये वक्त का राजा होता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम आपको नवरंग फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत, महीपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है।

तू छुपी है कहाँ, महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल जवाब ही संसार नहीं होते, पशु और पंछी जो कि बेजुबान होते हैं वो भी संसार में होते हैं। इनका कहने का मतलब ये कि बिना सवाल और बिना जवाब के भी संसार चलता रहता है। अब देखिए भाई, पशु और पंछियों की जहाँ तक बात है तो उनमें भी हो सकता है कई तरह के सवाल इशारों से होते हों जो हमें समझ में ना आते हो, ये भी हो सकता है, ये एक सवाल है, हो सकता है ऐसा। चलिए, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नए देश नया परिवेश नए दृश्य अलग अलग रहन सहन पूछना ही पड़ता है। मैं बर्लिन में हूँ और बहुत कुछ नया देख रही हूँ और सवाल भी करती रहती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ है, इस तरह के सवाल मन में आते हैं और जवाब मिलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों और जवाबों की मरीचिका जीवन में अंतहीन खोज, असंतोष और भ्रम का एहसास कराती है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी की चमक देखकर इंसान भागता है पर वहाँ कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम सत्य नहीं है मगर असल में एक नया सवाल होता है। जवाबों की खोज की तृष्णा है जो नए सवालों की जनक होती है। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। मुख्य कलाकार कौन है फिल्म में ये बताइए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हम सुनेंगे। एक साथी की ये बात आपको पढ़कर सुना देते हैं कि नवरंग फिल्म का जो हमने गाना सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि इस गाने में शहनाई और बांसुरी बजाई संगीतकार रामलाल ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया सी रामचंद्र ने। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता ही है, चाहे मौन ही क्यों ना हो, अनुत्तर रहकर हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। इंसान चाहे कि कोई उससे बात करे या उसके प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला और अंतिम गाना शोला और शबनम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से, कैफी आज़मी के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

शोला और शबनम इस फिल्म का गाना आपने सुना। संगीत खय्याम का एक साथी के इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखती हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में सवाल पूछते हैं। जी मेरे साथ हुआ था, बुलबुल पक्षी जो रोज़ दाना डालती थी, एक दिन व्यस्त थी काम में तो वो मेरे आसपास बार बार मंडरा रहा था और अलग सी उग्र सी बोली में मानो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आज अपुन का दाना किधर है। तो देखिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। चलिए धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए। और गीतों को आपने ध्यान से सुना, उसके बारे में लिखा, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गाना, जिसमें आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

फिल्म संगीत में आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं पूनम फिल्म का एक गाना। आवाजें हैं चंद्रानी मुखर्जी और मोहम्मद रफी की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और अन्नू मलिक का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, 2:30 पर आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 होने का है और ये समय होता है इस घंटे की खास खबरों का, तो कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने सभी से मिलकर देश हित में काम करने का आह्वान किया।
1: मध्यप्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्हें डेडिकेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्यप्रदेश ने लिया है, आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी आए इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच। अदरवाइज हमने तो आज समय कैसा आ गया मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा।
0: मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान तथा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय संस्थानों ने प्रदेश के विकास में अपने योगदान और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में कथित नियुक्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनन की पीठ ने हरिशरण देवकन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की गई है। झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा चुका है और राज्य सरकार को 15 सितम्बर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायसेन जिले के सांची में आधुनिक सुविधाओं से लैस उपचार उप डाकघर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। शाम में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअली शामिल होंगे। सांची की ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए डाकघर को आधुनिक और नागरिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया गया है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। शाम को महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी, जिसमें बाबा चार स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। रायसेन के भोजपुर में भोजेश्वर महादेव का करीब 6 क्विंटल फूलों से महाकाल स्वरूप में श्रृंगार किया गया। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में 15,000 रुद्राक्ष से विशेष श्रृंगार होगा। ओंकारेश्वर में बाबा की सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ की रथ से सवारी निकलेगी। बारिश के बावजूद पूरे प्रदेश के शिवालयों में भक्तों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में डिंडौरी बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। विदिशा, रायसेन, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, मंडला, कटनी, रीवा, सीधी और छतरपुर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सतना में आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों और विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। झाबुआ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उल्लास एक अभिनव प्रयोग के अंतर्गत न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और न्यायालयीन कर्मचारीगण की आभा आईडी बनाने की प्रक्रिया आयोजित की गई। शिवपुरी में जिला प्रशासन और किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कल शहर की पुरानी अनाज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक और प्राकृतिक हाट बाजार का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, on farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने

0: बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
1: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने ये समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
2: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
3: PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा था कि हुरमुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुरमुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडे इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी। फिल्म का नाम है

0: छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे
1: साथियों। कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है जिद्दी।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है फारूक कैसर ने, धुन है जीएस कोहली की, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है शिकारी।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को अगले गीत में। बोल है राजेंद्र कृष्ण के, तर्ज है रवि की, फिल्म का नाम है शहनाई।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खय्याम, फिल्म का नाम है शगुन।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म का नाम है शबनम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों सखाओं सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा
2: और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। चंचल जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है।
2: बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती है तो अच्छा लगता है कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेल खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है, तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं और अपना काम जो है अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है।
1: कई बार मुश्किल वक्त में हम लगता है कि रुक जाएं या गिव अप कर देते हैं ना, हार मान लेते हैं, तो वहीं वो थम जाता है और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जहां वो रुकता है वहां उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमें हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है, इसलिए डरना नहीं है। और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक्त आया था ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया।
2: बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या है, वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएंगे,
1: लेकिन और हमारे सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएंगे, अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएंगे।
2: हाँ बिल्कुल, तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है छह आने का टिकट,
1: इसका पहला भाग।
2: जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो, अब इस जमाने में अगर हम छह आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें?
1: नहीं लगती है। हाँ। और आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी, उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि आना कैसा हुआ करता था। लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की, रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं।
2: बिल्कुल, और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा भी कर ली है।
1: और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर, ये हैं पश्चिम बंगाल की, जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि चर्चित रेसिपीज हैं, उनकी बात।
2: तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो दो मिठाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है, रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन लाबरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है।
2: अच्छा,
1: तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहाँ उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब ये मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा। और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है, और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है।
2: बड़ा मुलायम मुलायम सा और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है, और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब जिसको जितना मीठा पसंद है उतना

0: रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और
1: भाई आपको मिठास लेनी है, आपको लगता है कि भाई इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
0: बिल्कुल।

0: और गीत में जो बात थी कि आए हैं दिन सावन के,
1: जी
0: तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं। रिमझिम
1: बिल्कुल
0: बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियां ऐसी होती है, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है। हमारे कार्यक्रम में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना। तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी छह आने का टिकट, इसका पहला भाग, आइए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: छह आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है, इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी छह आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
4: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड तीन रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, यह समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
5: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
4: बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हां।
5: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?

0: एक हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
1: अरे वो यहाँ नहीं है क्या?
0: नहीं नहीं।
1: ओह खैर, दफ्तर तो है, यही रहूंगा। एक हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
0: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा,
2: नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा।
0: मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
1: आप ही किशोर जी हैं
0: जी,
1: आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
0: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
1: रखिए। जी जी जी जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता
0: जी।
1: चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है।
0: अच्छा।
1: और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा।
0: क्या?
1: उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
0: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? खैर, 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
1: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
0: जी?
1: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
0: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूँ और आसानी से ना नहीं कह सकता हूँ, लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: हाँ बोलिए।
1: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
0: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
1: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
0: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
1: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
0: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
1: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
0: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का

0: टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
1: ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उनके आने पर चला जाऊंगा।
0: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा ये दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी,
0: जी
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ,
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
2: अरे भाई भीखू,
0: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है, राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे कहानी छः आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

0: हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती है। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
2: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितेशी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं। जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपने मुश्किल से उबरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए। और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए ज़रूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरें और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया।
2: ये सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीज़ें हमारी मजबूती बन जाती है। और जब भी लगे कि मुश्किल ज़्यादा भारी हो रही है तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज़ आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने छोटे
1: छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा।
2: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
1: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया, वो हो गया, ये कह कर ही हम उस समस्या को मुश्किल
2: और बड़ा बना लेते हैं,
1: बड़ा बना देते
2: और
1: हैं।
2: बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना होगा।
1: तो हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सज़ा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की ज़रूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है, ये भी हमें ढूंढना होगा। और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
2: बिल्कुल। और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं

0: बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो
1: जी
0: आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे,
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता
1: और
0: है।
1: कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं, आपके चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में,
0: बिल्कुल
1: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
0: बिल्कुल
1: है।
0: हमें संबल देता है और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं है, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा। और घबराने की बजाय थोड़े से जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाए और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। हर मुश्किल के बाद दो चीज़ें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम एक दिन पहले ला के रख देते हैं, दालें ला के रख देते हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं, सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीज़ों का असर कम होगा।
1: बिल्कुल, कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है, निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
0: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं जो सफल व्यक्ति हैं,
1: बिल्कुल महान उन्होंने, व्यक्ति जो हुए हैं,
0: उन्होंने सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया तभी वो सफल हो सके।
1: हाँ, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
0: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराएं नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे ना हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
1: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना, तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है पर यह परखती है कि अपना इरादा, ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस तरह की बातें

0: कहकर हमारे हमारी हौसला अफजाई करे।
1: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे, लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
0: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक को शेलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं, बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और एक चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसें।
1: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं। और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है,
1: जरा ठहरो लेकिन ठहरने का समय नहीं है,
0: नहीं है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं आप सभी को, मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धुरत, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
1: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है।
0: क्या
1: ये माध्यम से,
0: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल इसमें, ये चीजें डाल दो, ये कितना खतरनाक लग रहा है। यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
1: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
0: लेकिन बतौर विशेषज्ञ आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
1: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20,000 से 22,000 है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1,00,000 के ऊपर है तो इस पर से आप समझ
0: ज्यादा है।
1: यस
0: जी जी।
1: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को, तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटिक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया, लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
0: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
1: हाँ,
0: पर थोड़ा संभाल के,
1: बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा
0: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
1: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
0: जी,
1: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
0: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
1: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
0: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा।
1: बिल्कुल
0: तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
1: आप कर दीजिए
0: हम सब उस्ताद हैं। फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं,
1: हाँ।
0: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फे, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फे हैं?

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो

0: जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है. मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है. और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है. और जब बाल में टक्कल बालनेस दिखाई देता है तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है.
1: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है
0: तो बालनेस कभी दिखाई देता है. 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है.
1: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई.
0: बिल्कुल. और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं. तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है.
1: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया. मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
0: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूँ तो रफली 30-40-50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है. लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है. मैं नहीं मानती हूँ
1: जी,
0: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए.
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल.
1: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी.
0: महीने के कितने हो गए? तो 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
1: 40-50
0: लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए. आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे.
1: और पुरुषों में?
0: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं. और जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे. कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं कहा जाता है
1: जी.
0: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेंडिक एलोपेशिया, वेरी बहुत कॉमन चीज है. ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं.
1: जिसको आपने टर्म यूज की,
0: हाँ,
1: ये क्या है?
0: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्निफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं, वो देखा जाता है.
1: ब्लू कलर की रोशनी में?
0: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें. तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं. उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है. दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेंडिक एलोपेशिया. तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं. और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू. सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं.
1: बिल्कुल.
0: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है. तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है.
1: जी बिल्कुल.
0: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन.
1: ये समझने की बात है.
0: ये समझने की बात है. तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है. और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट. तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के?
0: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है ट्राइकोलॉजिस्ट.
1: ओके.
0: एक डिग्री नहीं है.
1: जी जी.
0: हाँ. अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं.
1: ओके.
0: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ. लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है. तो ट्राइकोलॉजिस्ट

बोलोगे प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर. यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्माटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है या नहीं.

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं हाँ। डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं, 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?

0: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो
1: जी
0: 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
1: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो
0: यस
1: पता लगाते हैं
0: पता
1: कि
0: लगाते
1: किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
0: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
1: जी
0: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग
1: और उसका असर बालों पर जाता है।
0: बिल्कुल
1: जी, महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
0: महिलाओं में PCOD नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी PCOD हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
1: जी,
0: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे
1: बढ़िया
0: तो
1: बात,
0: हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो PCOD और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि PCOD है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल,
0: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
1: नहीं,
0: 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया।
1: जी ये बहुत आज के जमाने की चीज।
0: यस, और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं
1: जी।
0: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
1: एक तरह से आप जो हैं वो खानपान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई अगर खानपान ठीक नहीं किया तो इसका
0: सभी
1: असर
0: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवा अवस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं, हाँ। और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने लगती हैं।
1: दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारा एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के।
0: ओके,
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है, आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टेक हार्मोन थेरेपी। आप एस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोलो, खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
0: ओके,
1: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है। पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं और वहाँ उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, जब क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है,
0: इस उम्र में तो सबका होता है, हमारा भी हुआ था।
1: बिल्कुल, यही डायलॉग होता है।
0: जी जी जी, तो इसको कैजुअली नहीं,
1: हाँ, इसको कैजुअली नहीं लेना है। आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है। वही जो मैंने पहले बताया,
0: एक बार फिर बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल,
1: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30 40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी रीठा शीका काई चाय पत्ती जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना घरों में?
1: मेहंदी रीठा शीका काई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, प्याज का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं,
0: उल्टा हो जाएगा।
1: सी, इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के और उनका इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बॉटल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, और आप मुझमें बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके? आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
0: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा?
1: यस। सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
0: बिल्कुल।
1: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन

0: जस्ट लव जाना चालू किया एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव ऑल इज वेल
1: जी
0: यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम
1: ओके उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगी
0: yes.
1: मुझे लगता है यहाँ पर एक गाने की बारी है

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे
1: हैं। तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे?
1: यस।

0: आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
1: जी जी जी,
0: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
1: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
0: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
1: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
0: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर के वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
1: ओ हो,
0: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
1: बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
0: नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
1: इन अ मंथ तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल।
0: 12 सेंटीमीटर साल में।
1: हाँ, तो 10 साल में
0: तो आप करिए। तो
1: नहीं, ये हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
0: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
1: ओ हो,
0: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं।
1: लेकिन वो थिन रहेंगे।
0: वो थिन थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
1: जी,
0: तो वही कहना है, वापस शेडिंग को पहले रोकिए।
1: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
0: बिल्कुल,
1: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
0: यस,
1: बढ़िया गाना, कैफी आजमी का है। तो
0: ये जुल्फ अच्छी होनी चाहिए।
1: हाँ, जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत, और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि दो महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं?
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी।
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉयिंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
0: और यहाँ तो उल्टा दिन भर का खाना रात को हो रहा है।
1: तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है, लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है।
0: यस यस बिल्कुल।
1: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब ये मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिसोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है। 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
0: चिंता की बात है।
1: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
0: जी
1: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
0: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी
1: या।
0: और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है। स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है, कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है, ना इवन पैसिव स्मोकिंग। कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर।
0: बिल्कुल, अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है?
1: बहुत बड़ा भ्रम है
0: जी।
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है
0: जी,
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है,
1: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
0: जी,
1: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है, एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
0: तो ये समझने की जरूरत है।
1: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
0: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: यस yes.
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

श्रोताओ, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा।

बस को बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोरदा आ गई सुबह सुबह। मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा सारा साथ होगा।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
7: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में वन विभाग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के अवसर पर आयोजित आभार प्रदर्शन समारोह में पदोन्नत शासकीय सेवकों के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें सम्मानित कर नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर्स को भारत ले आए हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 साल पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूपीआई आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में यूपीआई के जरिए केवल 1,78,00,000 लेन देन हुए थे। वर्ष 2025-26 में इनकी संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय इस महीने की 27 तारीख को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
6: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

हेलो नमस्कार और गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी को और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त दिपेश बर्डे और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं के दिलों की वाणी यानी युववाणी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय करियर सेवा यानी नेशनल करियर सर्विस NCS। दोस्तों, आज के समय में करियर चुनना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सवाल होता है कि नौकरी कहाँ मिलेगी, कौन सी नौकरी मेरे लिए सही है, सरकारी नौकरी के अवसर कहाँ मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में क्या विकल्प है और अगर हमें अपने कौशल को बेहतर बनाना हो तो कहाँ से शुरुआत करें। दोस्तों, इन तमाम सवालों के बीच भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCS। दोस्तों, आज जानेंगे राष्ट्रीय करियर सेवा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां, मगर उससे पहले आपको सुनाते हैं आज की शाम का पहला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म मैं हूं ना से।

0: दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय करियर सेवा के बारे में। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय करियर सेवा आखिर क्या है। राष्ट्रीय करियर सेवा भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य नौकरी तलाशने वाले युवाओं, नियोक्ताओं, करियर सलाहकारों और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी सेवाओं के एक डिजिटल मंच प्रदान करना है। दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो NCS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा नौकरी खोज सकते हैं, करियर से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने कौशल तथा रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.ncs.gov.in। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर NCS पर युवाओं के लिए क्या खास है। सबसे पहले जॉब सर्च यानी नौकरी की तलाश। दोस्तों, आप अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, स्थान और रुचि के अनुसार नौकरी के अवसर तलाश कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सुविधा है करियर इन्फॉर्मेशन और करियर काउंसलिंग। दोस्तों, कई बार विद्यार्थी किसी एक क्षेत्र में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने वही रास्ता चुना होता है, लेकिन हर व्यक्ति की रुचि, क्षमता और लक्ष्य अलग होता है। ऐसे में सही करियर मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, NCS युवाओं को करियर से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। दोस्तों, NCS सिर्फ नौकरी तलाश वाले युवाओं के लिए नहीं है। अगर कोई कंपनी या संस्था कर्मचारियों की भर्ती करना चाहती है तो वह भी NCS के माध्यम से अपनी जॉब वैकेंसीज पोस्ट कर सकती है और उपयुक्त उम्मीदवारों तक पहुंच सकती है। यानी एक तरफ है जॉब सीकर्स और दूसरी तरफ है एम्प्लॉयर्स। NCS दोनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनता है। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या अपने करियर को लेकर किसी दिशा की तलाश कर रहे हैं तो NCS आपके लिए एक उपयोगी सरकारी मंच हो सकता है। तो आज ही अपने करियर को लेकर एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी क्वालिफिकेशन पहचानिए, अपनी स्किल्स को समझिए, सही अपॉर्चुनिटी तलाशिए और अपने भविष्य की दिशा खुद तय कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, करियर सिर्फ नौकरी पाने का नाम नहीं बल्कि अपनी क्षमता को सही दिशा देने का नाम है। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं फिल्म दिल मांगे मोर से ये गाना।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ माही पारस मोदी

0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं आज की खास वार्ता, विषय कार्बन फुटप्रिंट और युवा दायित्व पर। वार्ताकार है माही पारस मोदी।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ माही पारस मोदी और आज मैं आपसे किसी दूर की कहानी को साझा करने नहीं आई हूँ, बल्कि हमारी अपनी धरती की कहानी साझा करने आई हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह की हवा पहले जैसी ठंडी और ताज़ा क्यों नहीं लगती? क्यों गर्मी हर साल थोड़ी और तेज हो जाती है और बारिश समय पर क्यों नहीं आती? असल में ये संकेत है हमारी धरती के बदलते संतुलन का। जी हाँ, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कार्बन फुटप्रिंट। साधारण शब्दों में कहें तो हमारे रोजमर्रा के काम जैसे वाहन चलाना, बिजली का अनावश्यक एवं अत्यधिक उपयोग, पेड़ों की कटाई, इन सब से वातावरण में जो हानिकारक गैसें बढ़ती हैं वही मिलकर हमारा कार्बन फुटप्रिंट बनाती हैं। पर्यावरण का संकट केवल वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय नहीं रहा, बल्कि अब यह आम जन की समस्या बन चुका है। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हम सच में समझ पा रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी इस पृथ्वी को कितना प्रभावित कर रही हैं? क्या हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि जिस

प्रकृति ने हमें जीवन दिया है वही आज हमारी लापरवाही के कारण संकट में है। आज कार्बन फुटप्रिंट केवल वैज्ञानिक शब्द नहीं रहा बल्कि यह हमारी जीवन शैली का आईना बन गया है।

बढ़ती है तो पृथ्वी का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके परिणाम हम अपने आसपास साफ साफ देख सकते हैं। कई स्थानों पर गर्मी पहले से अधिक पड़ गई है। ये मौसम का बदलाव नहीं, प्रकृति का असंतुलन है। कहते हैं कि धरती का ताप बढ़ रहा है, ये संकेत प्रकृति का है। समझ लो अब भी समय है, ये संदेश भविष्य के हैं। अगर आज नहीं संभले हम अपने व्यवहार से, तो कल पछताना होगा हमें अपने ही संसार से। कार्बन फुटप्रिंट के बढ़ने से केवल मौसम ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। प्रदूषण बढ़ने से हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। आज कई लोग सांस से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं। शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अगर हम इसी तरह पृथ्वी का दोहन करते रहे तो आने वाले समय में यह सब दुर्लभ हो सकता है। यही कारण है कि आज पर्यावरण संरक्षण को केवल एक विषय नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखने की आवश्यकता है। श्रोताओं, युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनके पास ऊर्जा होती है, नई सोच होती है और बदलाव लाने का साहस भी होता है। आज अगर युवा यह निश्चय कर ले कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करेगा तो समाज में एक नई दिशा दिखाई दे सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं? अगर उत्तर हाँ है तो यही बदलाव भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। एक कदम अगर हम बढ़ाएंगे, हजार रास्ते बन जाएंगे। बस जागरूकता की लौ जलानी है, फिर बदलाव खुद आ जाएंगे। अगर हम ये सोचें कि पर्यावरण तो बहुत गहन और बड़ा विषय है, हमारे छोटे छोटे योगदानों से क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी माँ हमारी छांव बन सकती है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें अपनाकर भी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, जैसे बिजली का अनावश्यक उपयोग न करने, पानी की बचत करें, प्लास्टिक का उपयोग न करें, छोटी दूरी के लिए साइकिल या पैदल चलने की आदत डालें। इन योगदानों से भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं हम। इसी तरह यदि हम अधिक पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें, तो ये पर्यावरण को संतुलित रखने में भी बहुत सहायक होगा। श्रोताओं, अगर हम हाल के वर्षों की खबरें और वैज्ञानिक रिपोर्टों को देखें तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि पर्यावरण का संकट अब केवल चेतावनी नहीं, वास्तविकता बन चुका है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने बताया था कि पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। कई वर्षों को इतिहास के सबसे गर्म वर्ष के रूप में भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दुनिया के कई देशों में अत्यधिक गर्मी की लहरें भी दिखाई देती हैं। कुछ क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग लगी तो कहीं अचानक से बाढ़ आ गई। हजारों लोगों के जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। न सिर्फ लोग बल्कि उनके रोजगार, खासकर किसानों के खेत खलिहान भी भारी मात्रा में नष्ट हुए। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम केवल इन खबरों को सुनकर आगे बढ़ जाएं या फिर इनके पीछे छुपे संदेशों को समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही रोचक बात कही है, लोग किसी बड़े खतरे को तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक असर सीधा उनके जीवन पर दिखाई न दे। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन जैसे विषय पर लोग सुनते तो हैं, मगर उसे अपनी जिंदगी से जोड़कर महसूस नहीं करते। और यही युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका शुरू होती है। दुनिया में कई देशों में युवाओं ने एक नया तरीका अपनाया है, क्लाइमेट स्टोरी टेलिंग, यानी आंकड़ों से ज्यादा लोगों की असली कहानियां सुनाना। और अब केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि भारत में भी युवाओं द्वारा चलाया गया यूएन इंडिया का वी द चेंज अभियान लोगों की असली कहानियां सामने ला रहा है। आज हम खुद भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक संदेश बना सकते हैं। पर्यावरण तब तेज होता है जब लोग केवल सुनकर नहीं, असल जिंदगी से देखकर प्रेरित होते हैं और कदम उठाते हैं। आज की पीढ़ी के पास केवल तकनीक की ही नहीं बल्कि प्रभाव की भी शक्ति है। एक पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, एक आवाज आंदोलन बन सकती है और एक छोटा सा कदम समाज को बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या हम केवल ट्रेंड बनाना चाहते हैं
या सच में परिवर्तन लाना।

0: बनना चाहते हैं। हमें एक ऐसी पीढ़ी बनना होगा जो अपने करियर के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाए, क्योंकि आने वाले वर्षों में लोग ये याद नहीं रखेंगे कि हमने कौन सा ट्रेंड फॉलो किया, वे याद रखेंगे हमने परिवर्तन के लिए क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया। जब पृथ्वी ने मदद मांगी तो क्या हम चुप रहे या हमने आवाज उठाई थी? और शायद यही वो पल है जहां से बदलाव शुरू हो सकता है, एक सोच से, एक जिम्मेदारी से और एक ऐसे युवा से जो ये समझता हो कि धरती केवल रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। हमें अब यह समझना होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कोई भविष्य की समस्या नहीं, वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश, बिगड़ती हवा ये केवल समाचार नहीं, प्रकृति की चेतावनियां हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जो भी संभव हो प्रयास करेंगे और पर्यावरण संरक्षण हेतु दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
1: चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और जरूरी विषय पर, टाइम मैनेजमेंट और स्टडी प्लान। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में अक्सर हम सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम कम है, सिलेबस बड़ा है, सब्जेक्ट ज्यादा है और साथ ही दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। ऐसे में कई बार हम पढ़ाई शुरू करने से पहले ही प्रेशर महसूस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने अवेलेबल टाइम को सही तरीके से मैनेज करें और एक सिंपल सा स्टडी प्लान बनाएं तो पढ़ाई को काफी आसान और व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आखिर है क्या। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि दिन के हर घंटे का हिसाब रखना या लगातार पढ़ते रहना। इसका सिंपल सा मतलब है अपने समय को इस तरह यूज करना कि जरूरी काम समय पर पूरे हो सके और पढ़ाई के लिए भी पर्याप्त टाइम मिल सके। दोस्तों, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने दिन को समझें और यह देखें कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। कई बार प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं होती बल्कि टाइम के सही इस्तेमाल की होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो शुरुआत में अपने ऊपर बहुत बड़ा टारगेट मत रखिए। कई स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते समय इतना बड़ा टारगेट बना लेते हैं कि उसे देखकर मोटिवेशन आने के बजाय प्रेशर आने लगता है। दोस्तों, इसलिए शुरुआत हमेशा छोटे टारगेट से कीजिए, जितना कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं उतने टाइम से शुरुआत करें। जब आपकी कंसंट्रेशन और स्टडी हैबिट डेवलप होने लगे तो धीरे धीरे स्टडी टाइम बढ़ा सकते हैं। यानी दोस्तों, शुरुआत में खुद से यह उम्मीद मत रखिए कि आप कई घंटों तक लगातार पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। पहले हैबिट बनाइए, फिर धीरे धीरे उसे इम्प्रूव कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टडी प्लान की। स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए जिसे आप वास्तव में फॉलो कर सके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस यह तय कर ले कि आपको क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको किस काम को प्रायोरिटी देनी है। एक दिन में बहुत सारे टारगेट रखने के बजाय कुछ जरूरी टारगेट्स रखिए। दोस्तों, अगर किसी दिन आपका पूरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने प्लान को सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी स्टडी जर्नी की तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए। फोकस इस बात पर कीजिए कि आप अपने अवेलेबल टाइम में कितना बेहतर कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, सबसे पहले खुद से है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का अवसर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 अगस्त से 3 सितंबर 2026 की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी IOCL की आधिकारिक वेबसाइट IOCL.com पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए पात्र है तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब सुनाते हैं आपको फिल्म बदलापुर से यह गीत।

दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये गजल अभी आपने सुनी। एल्बम का नाम था कहकशा। आशा भोसले और भूपिंदर की आवाजों में ये गजल थी और संगीत था मधु मुखर्जी का था। कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में निजामुद्दीन निजाम का लिखा हुआ ये गैर फिल्मी गीत। संगीत निर्देशन है सरदार मलिक का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी। गायक कलाकार और संगीतकार थे खालिद, और इस गजल को लिखा था इब्राहिम अक्ष ने। एल्बम का नाम था खालिद रूह ए गजल। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम गुलफाम से हरिहरन की आवाज में कैफ भोपाली का लिखा हुआ ये गैर फिल्मी गीत। संगीत निर्देशन है जॉली मुखर्जी का।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना हरिहरन की आवाज में। कैफ भोपाली ने इस गीत को लिखा था, जॉली मुखर्जी ने संगीत तैयार किया था, एल्बम का नाम था गुलफाम।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

और श्रोताओं, इसी गजल के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता को अब हम संपन्न कर रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। तब तक के लिए आप आनंद लें इस गजल का।

0: आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: Our economic cooperation.
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री

0: मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओ, अब आपको तराने नए पुराने कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में पत्थर के फूल, इस फिल्म का गाना।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया दिना।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम हम

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं बालिका बधू फिल्म से अमित कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
3: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
4: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
3: हाँ भाई समझा।
4: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया।
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत। शब्द रचना मजरूह की है, संगीत SD बर्मन का है, फिल्म का नाम है बात एक रात की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में एक और गीत हम शामिल कर रहे हैं समय को ध्यान में रखते हुए। इस गीत को लिखा है मजरूह ने, संगीत निर्देशन रोशन का है, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है ममता।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार गीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 होने को है, बस कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे कार्यक्रम लोकरंग के साथ।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए ये झूला गीत राधा खरे और रेखा गुप्ता की आवाज में।

0: श्रोताओं, ये लोकगीत अभी आपने सुना राम सहाय पांडे की आवाज में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत अब आपको सुनवा रहे हैं पार्वती बाई और भागवती बाई की आवाज़ में ये लोकगीत।

और श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकरंग को हम संपन्न कर रहे हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तब तक आनंद लें इस लोकगीत का।

0: देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक है। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते
2: हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय

0: कि सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद डब्ल्यू आर खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर के बाद यानी 7:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। 7:20 से सुन सकेंगे आप कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8 से समय होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का और 8:20 से कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत कुछ गैर फिल्मी गीत और संगीत आपको सुनवाएंगे। रात 8:45 से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या, दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9 से समय होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। 9:30 से मुंबई केंद्र से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। रात 11 से दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार। आज की प्रसारण सभा का समापन हम रात 11:10 पर करेंगे।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, अब कल यानी 25 अगस्त 2026 मंगलवार की सभा के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे रहे हैं। कल की प्रसारण सभा की शुरुआत हमेशा की तरह हम प्रातः 5:53 पर करेंगे। 6:05 से कार्यक्रम अर्चना आप सुन सकेंगे। 6:30 से श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। 6:40 से भूले बिसरे गीत। 6:55 से संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से। 7:05 से कृषि संकेत कार्यक्रम। 7:20 से मन चाहे गीत और 7:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता। सुबह 8:15 से लोक संगीत और 8:30 से पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। 9 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे। 10 से भोपाल केंद्र से सुनिएगा जिले की चिट्ठी कार्यक्रम और 10:05 से शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी। कल सुबह 10:30 से आप सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। 11 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 11:30 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के

0: कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। अब से कुछ ही पलों के बाद यानी 7:10 से सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण।
1: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में 13 एमओयू हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग शुरू करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बालाघाट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खाली पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिए। और यूपीएससी ने ईपीएफओ में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 80 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को आधुनिक खेती और नई तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर है।
1: तो बदलाव तो आया है, लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में हमारे पास खेती के भी खेती करने में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर बहुत सारे प्रकार हुए। तो आज का समय थोड़ा बदल गया है, लेकिन ये बात सही कि पहले आमदनी थोड़ी होती थी, अब आमदनी भी बढ़ गई। मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मेरे अपने 50 बीघा के खेत में जब हम गेहूं करते थे तो वो गेहूं की जो मात्रा थी वो थोड़ी कम होती थी, और आज वही खेत है, लेकिन आज अच्छे बीज लगाने कारण से कई गुना ज्यादा खेती की हमारी फसल हो रही है। तो ये बदलाव तो आया, काफी बदलाव आया।
0: श्री यादव ने बताया कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एनडीडीबी के साथ समझौता किया गया है। साथ ही हर साल 1 लाख गिर नस्ल की बच्चियां तैयार करने की योजना जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए कोचिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए 10 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे और 5 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग के साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: खेल में भी अपने बच्चे आगे रहे, खेलना भी चाहिए कि नहीं? सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, इस बार भी करें कि नहीं करें? जोर से बताओ। इस बार भी की जाएगी ताकि खेल कूद में भी हमारे बच्चे पीछे ना रहें। बोले भारत माता की। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करेंगे, कैरियर काउंसलिंग के लिए बच्चों को थोड़े सहयोग की जरूरत होती है कि पढ़ के हम क्या करें। तो इसी कोचिंग क्लास में हर महीने कैरियर काउंसलिंग के लिए भी विशेषज्ञ आएंगे जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे कि उनको किस रास्ते जाना चाहिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 12, राज्य विश्व

0: विद्यालयों और कॉलेजों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक शामिल हैं। ये पुरस्कार शिक्षण, शोध और नवाचार, विद्यार्थियों तक पहुंच और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस साल पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए थे। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा और खाली पदों पर नई भर्ती की जाएगी। आज भोपाल में वन विभाग के पदोन्नत अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि वनकर्मी जंगल, वन्य प्राणियों और वन संपदा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वन विभाग के 4,506 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। उन्होंने सभी पदोन्नत कर्मचारियों को बधाई दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बालाघाट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार उपलब्ध रखने और खाली पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की नियमित जाँच और निर्माणाधीन स्वास्थ्य सुविधाओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने सरकारी भविष्य निधि संगठन में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 80 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 11 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज के समय में स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है। आज भोपाल में आयोजित समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रतिभाशाली युवा और पर्याप्त संसाधन है। केंद्रीय संस्थानों को कौशल, शोध और नवाचार के जरिए प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक संस्थान, एक संकल्प मध्यप्रदेश के भविष्य निर्माण की कार्य योजना है। कॉन्क्लेव में शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थानों के बीच 13 MOU भी हुए। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर यानी आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। खंडवा में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की भव्य महासवारी श्रद्धा और उत्साह के बीच निकाली गई। वहीं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कल 25 अगस्त को सीवन नदी तट से कुबेरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकालेंगे। उधर जबलपुर में श्रावण के अंतिम दिन यानी आज सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भीड़ देखी गई। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली गई। अनूपपुर के अमरकंटक में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमरकंटक पहुंचकर जालेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और सुख शांति की कामना की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल 25 अगस्त को ग्वालियर जिले के किसानों से संवाद और कृषि नवाचारों पर चर्चा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 203 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की गई है। अशोकनगर जिले के 68 हितग्राहियों को 1,48,00,000 रुपए की राशि का अंतरण किया गया। दमोह में अधिकारी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आमजन को शासकीय सेवाओं का लाभ बिना किसी असुविधा के समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। रायसेन की सांची मार्ग स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुर में सघन मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम गतिविधियां संचालित की गई। अभियान के दौरान ग्राम कराहल और ककरधा में कुल 155 घरों का लार्वा सर्वेक्षण किया गया। धार की भूशाला में मां बागदेवी मातृशक्ति कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई। राजगढ़ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जनगणना संबंधी कार्यों की समीक्षा की और सभी एसडीएम को संबंधित जानकारी निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। मंडला में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने

स्वदेशी स्वसहायता समूह सरी नैनपुर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियों की खरीदारी की। अनूपपुर में 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाएगा। गुना के एनसीसी

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभा सभी भैया बहनन को शशि की राम राम पहुंच जावे। आज भैया बहनें सुने अपने खेतों में लगी फसलों में आ रही समस्याओं से संबंधित जानकारी। और भैया बहनों, सावन को महीना चल रहा है, सो सुनवा है बढ़िया से लोकगीत। मंडी मौसम की जानकारी भी दे हैं। और भैया बहनों, जैसो कि आप और जानते ही हो कि रेडियो के माध्यम से आप औरों को कई तरह की जानकारियां दी जाती हैं, जिन्हें सुन के आप औरें जागरूक हुए। जो भी दिन, दिवस, सप्ताह, पखवाड़ा मनाए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताऊ थे। तो भैया बहनों, हम आपको बता देवे कि हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाओ जाते हैं। जो पखवाड़ा मनाए जावे को जो ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेत्रदान के बारे में जानकारी मिले और सभी जने खूब जागरूक रहे। भाई बहनों, भगवान ने अपन को आंखन के रूप में अनमोल दौलत दी है। अपन सभी आंखन से दुनिया की सुंदरता देखा थे, भुनसारे को उगत भव सूरज देखा थे, खेतन की हरियाली देखा थे, और चौमासे के जब बरसात को महीना आउत है, सो रिमझिम रिमझिम फुहार, फसलन की लहर, घर परिवार और अपने बाल बच्चन के चेहरा सभी कछु अपन आंखन से तो देख पाउत है। अपन सभी खूबई हंसी खुशी जीवन जिया थे। और भैया बहनों, जब अपन को कभू आंखन में कछु परेशानी सी होने लगाते, दिक्कत सी होने लगाते, तो ऐसो लगन लगाते ऐसो नहीं जा परेशानी हमेशा के लाने हो जावे। अपन को दिखावे नहीं तो फिर कैसे जीवन अपन जिए। भाई बहनों, जब अपन देखा थे कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखन में रोशनी नहीं रहते, ऐसे जरूरतमंद लोगन के लाने नेत्रदान आशा की एक नई किरण बन सकत है। भाई बहनों, नेत्रदान एक नेक और महान काम है। जब कोनो आदमी इस दुनिया से चलो जाते है, तब भी उकी अखियन के उपयोग को कोनो जरूरतमंद इंसान की जिंदगी में उजियारू लावे में हो सकत है। माने इंसान दुनिया छोड़वे के बाद भी कोनो दूसरे के लाने रोशनी बन सकत है। भैया बहनों, नेत्रदान के बारे में कई तरह की गलत धारणाएं बनी है। कछु लोग डर के कारण नेत्रदान नहीं कर पाऊ, तो कछु लोगन को जानकारी की कमी रहते, सो उके मारे भी अपन और नेत्रदान नहीं कर पाऊ थे। लेकिन भैया बहनों, अपन सभी को नेत्रदान के बारे में सही जानकारी हो वो बहुत ही जरूरी है।

0: नेत्रदान बहुत ही नेक काम है। जैसे कि जानकारी की बात आई है तो नेत्रदान के लाने पहले से अपन अपने परिवार वालों को बताएं कि हमें नेत्रदान करने हैं। और भैया बहनों, जब अपन ये बातें अपने परिवार वालों को बताते हैं तो कभी कभी तो परिवार वाले भी नाखुश से हो जाते हैं कि ऐसी बातें ना करो। और मगर अपन को ये सब बातें जस बताओ चाहिए अपने घर में कि हमें नेत्रदान करने हैं। और जा बात तो सभी जने जाना थे कि मृत्यु के बाद ही नेत्रदान होते, तो नेत्रदान करवे के लाने आई बैंक या फिर स्वास्थ्य संस्था से संपर्क करने होते। परिवार में कोनों ने खुद की मृत्यु के बाद नेत्रदान करवे की इच्छा जताई है तो परिवार के लोगन को उगी इच्छा पूरी करावे में सहयोग करवो भी जरूरी होते। मृत्यु के बाद नेत्रदान की प्रक्रिया समय से करावो जरूरी होते। इसे परिवार को जल्दी से जल्दी संबंधित आई बैंक या फिर स्वास्थ्य संस्था से संपर्क करो चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेत्रदान से अपने शरीर में कोनो खराबी ना हो जाए, अंतिम संस्कार के समय कोनो परेशानी ना हो जावे। ऐसी भैयारो तो ऐसी कोनो बात नहीं है। नेत्रदान एक नेक काम है, कहत भी है नेत्रदान महादान। और भैया बहनों, हम तो यही कहे हैं कि जीवन से तो एक दिन जाने हैं, जीवन से तो एक दिन जाने हैं, सब कछु इतने रह जाने हैं। नेत्रदान करके भैया कौनों के जीवन में उजियारू बन जाने हैं। तो हमारे भैया बहने समझ गए हुए कि नेत्रदान करवो कितनो जरूरी है। अपन अगर नेत्रदान करत हैं तो भैयारो जो नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं, उनके जीवन में रोशनी नहीं है, तो अपन उनकी रोशनी बन सकते हैं। और अब हम सुनवा रहे हैं आपको एक बढ़िया सो लोकगीत कैलाश शुक्ला को गाओ भाओ।
1: राम लला।

0: हमारा भैया बहनों सुन रहे थे कैलाश शुक्ला ऋषि को गाओ भाव लोकगीत। और भैया बहनों, जैसे कि बात करी थी हमने कि अपनी खेती बाड़ी में समस्याएं आती ही रहती हैं और उनके निदान के लाने भी अपन कृषि विशेषज्ञों से बातचीत आपको सुनवाऊ थे। तो आज हम बढ़िया सी जानकारी आपके लाने लेके आए हैं खरीफ फसलों में रोग कीट नियंत्रण के बारे में, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, और इनसे बातचीत करी है राजेंद्र नारायण तिवारी ने।
1: किसान भैया बिन्नारो, समय समय पे हम अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को बुला के आप औरों को खेती किसानी से जुड़ी भई नई नई और उपयोगी जानकारी दुआउत रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी के लाने, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी में। तो डॉक्टर साहब से आज हम चर्चा कर रहे हैं खरीफ फसलों में लगवे वाले रोग और कीटों के नियंत्रण के बारे में। तो डॉक्टर त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जब बताएं कि अबे खरीफ फसलों में कौन कौन से रोग कीट लग रहे हैं और किसान भैया आ रहे हैं, उनको नियंत्रण कैसे करें?
2: वर्तमान में हमारे सागर जिले में या सागर के आसपास के जिलों में सोयाबीन, मक्का, उड़द, तिल, अरहर, ये फसलें और साथ साथ सब्जियां इस पूरे क्षेत्र में विशेष तौर पर लगाई जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करें सोयाबीन की। सोयाबीन में दो बीमारियां प्रमुखता से आती हैं, एक पीला मोजेक और दूसरा राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट।
1: जी,
2: पीला मोजेक एक ऐसी बीमारी है जो सफेद मक्खी नामक कीट से फैलती है और ये विषाणु जनित बीमारी है, वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है। तो इसके जो लक्षण हैं वो हरी पत्ती के बीच बीच में पीले पीले धब्बे बनते हैं और बाद में पूरी की पूरी पत्ती पीली हो जाती है और ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये बीमारी के नियंत्रण के लाने अपने किसान भैया आ रहे हैं, कौन कौन से उपाय अपनाए, ये बारे में भी कछु जानकारी देवे।
2: अगर फूल आने के पहले ये बीमारी आ गई तो काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसकी पहचान करके किसान भाई तत्काल रोगी पौधों को खेत से निकाल के बाहर करें, उनको नष्ट करें, और सफेद मक्खी जो कीट है जिसके द्वारा इस बीमारी का फैलाव होता है या संचरण होता है, उस सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए आप कोई भी कीटनाशी जो सर्वांगी कीटनाशी है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, एसिटामीप्रिड 20%, या थायमेथोक्सेम 25%, या वर्तमान में इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल का पूर्व मिश्रित जो कीटनाशी है वो बाजार में उपलब्ध है, उसका आप छिड़काव करें जिससे ये सफेद मक्खी का नियंत्रण हो और बीमारी का फैलाव

0: जी, दूसरी जो सोयाबीन की प्रमुख बीमारी है वो है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। इस बीमारी में पत्तियों के ऊपर अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं और ये धब्बे बढ़ते जाते हैं और पूरा का पूरा पौधा पीला सा दिखने लगता है बीचों बीच खेत के, और बाद में जब उसकी पत्तियां सूखती हैं तो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं वो, और पौधा ऐसा लगता है जैसे पानी में उबाल दिया हो किसी ने, उबली हुई सी लगती हैं पत्तियां। और ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, जब हवा तेज चलती है, बारिश का मौसम रहता है, तो ये बीमारी धीरे धीरे पौधों से पौधे टकरा के जहाँ पे घने ज्यादा बोते हैं वहां पे ये समस्या ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो खेतों की किसान भाई लगातार निगरानी करें, खेतों को लगातार देखते रहें। अगर खेत के बीच में ऐसा कोई छरका या कोई 10-5 पौधों में ये बीमारी दिख रही है तो उन पौधों को मिट्टी सहित खेत से बाहर करें, और वहां पे टेबुकोनाजोल और सल्फर का पूर्व मिश्रित फफूंदनाशी या एजोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का पूर्व मिश्रित फफूंदनाशी या पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का पूर्व मिश्रित, मतलब जो नई जनरेशन के हमारे फफूंदनाशी हैं, उनकी हम 100 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी में घोल के उस पर्टिकुलर पॉकेट में, उस पर्टिकुलर रोगग्रस्त क्षेत्र में डालें और बाद में फिर पूरे खेत में छिड़काव करें, जिससे ये बीमारी का फैलाव खेत में ना हो पाए।
1: डॉक्टर साहब, अपने क्षेत्र में किसान भैयाओं ने सोयाबीन के संगे उड़द की खेती भी कर रखी है, तो उड़द में कौन कौन सी बीमारियां लगत हैं और उनको नियंत्रण किसान भैया कैसे करें, ये बारे में भी कछु बताएं।
0: उड़द में भी पीला मोजेक नामक बीमारी आती है, इसमें भी हमको रोगी पौधों को खेत से बाहर करना है और सर्वांगी कीटनाशी एसिटामीप्रेड या थायमेथोक्सेम का छिड़काव करना है। इसके बाद जो तिल वाला क्षेत्र है वहां पे इस मौसम में, पर्टिकुलर बरसात के मौसम में, वहां पे एंथ्रेक्नोज या पत्तियों पर लगने वाले धब्बे आते हैं, यही बीमारी इसी तरह की बीमारी उड़द में भी आती है। तो दोनों में, चाहे हमारा तिल हो चाहे हमारी उड़द हो, एंथ्रेक्नोज जिसमें छोटे से लाल धब्बे बनते हैं और बाद में पूरी पत्ती काली हो जाती है, सूख जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये बीमारी के नियंत्रण के लाने अपने किसान भैया रहे कौन कौन से उपाय अपनाएं, ये बारे में भी कछु जानकारी देवें।
0: इस बीमारी के लक्षण दिखने पे हमको पौधों को निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम वहां पे टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या क्लोरोथेलोनिल इस फफूंदनाशी का या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब इसका स्प्रे कर दें, और दो बार स्प्रे करना है हमको, एक स्प्रे हम आज करते हैं तो दूसरा स्प्रे हमको 5 दिन बाद फिर से करना है। तो अगर दो बार हम स्प्रे कर देंगे तो ये बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, अरहर भी एक महत्वपूर्ण फसल है, तो अरहर में कौन कौन सी बीमारियां लगत हैं और उनको नियंत्रण अपने किसान भैया रहे कैसे कर सकते हैं, ये बारे में भी कछु जानकारी देवें।
0: अरहर में जहाँ पे पानी भरता है वहाँ पे फाइटोप्थोरा रॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, पत्तियों पे छोटे छोटे धब्बे बनते हैं और तना काला हो जाता है और पौधा सूख जाता है। तो सबसे पहले तो हमने अरहर लगाई है वहाँ पे पानी की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, और इसके बाद वहाँ पे मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब पूर्व मिश्रित फफूंदनाशी है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के हम इसको स्प्रे और डेंचिंग इसकी कर दें मिट्टी में, तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाती है। तो ये प्रमुख फसलों में लगने वाली बीमारियां थी।
1: डॉक्टर साहब, मक्का भी एक महत्वपूर्ण फसल है और अपने क्षेत्र में कई किसान भैयाओं ने मक्का की फसल लगाई है, तो मक्का में कौन कौन से रोग और कीट लगाते हैं, इनके बारे में भी आप जानकारी देवें।
0: बहुत बढ़िया, मक्का असल में हाइब्रिड में कोई बहुत ऐसी समस्याएं नहीं आती है, केवल एक समस्या बहुत प्रमुखता से आती है, वो है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट। इसमें क्या होता है कि अगर हमने यूरिया की ज्यादा मात्रा का उपयोग किया और जो वैरायटी हमने हाइब्रिड लगाई वो इस रोग के प्रति अगर ससेप्टेबल है, तो मक्का बीच में ही पौधा टूट के गिरने लगता है, सड़ जाता है जी। और सड़े हुए स्थान से अल्कोहल जैसी सड़ी बदबू आती है। अगर ये बीमारी मक्के में आ रही है तो वहां पे हमको यूरिया का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, पानी का निकासी रखना है, बहुत घना मक्का होगा तो पानी नहीं भरना चाहिए वहां पे, और उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये सब एक तरह के फफूंदनाशी और जीवाणुनाशी हैं, या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कासुगामाइसिन, हम कोई भी जो बैक्टीरियासाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो मक्के में पत्तियों पे धब्बे तो बनते हैं लेकिन इनका बहुत ज़्यादा असर हो नहीं पाता, लेकिन कहीं पे अगर मान लो पोटाश की कमी है जिसमें किनारे किनारे की पत्तियां सूखती हैं
1: जी,
0: या तो वहाँ पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं। अगर पत्तियों पे कोई लीफ स्पॉट आ रहे हैं तो आप जनरल स्प्रे जो है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का कर सकते हैं। बाकी बीमारियों का प्रकोप केवल जो हमारे जिले में देखने में मिल रहा है वो बैक्टीरियल जो स्टॉक रॉट बीमारी है, जिसमें तना सड़ जाता है और सड़ के

0: बदबू सी आती है, उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है
1: जी। डॉक्टर साहब, धान की फसल में भी एक प्रमुख बीमारी लगाते हैं, खैरा रोग।
0: हाँ।
1: किसान भैया रहे जानत भी हैं कि पोषक तत्व जिंक की कमी से होते है, तो एक और नियंत्रण करवे के लाने अपने किसान भैया रहे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं?
0: देखिए, सबसे पहला तो ये था कि जब हमने धान लगाई है वहाँ पे हमको मिट्टी की जांच करानी थी, अगर जिंक की कमी थी तो हमको जिंक सल्फेट जमीन में स्प्रे करना था। अब वो समय निकल गया और पत्तियों पे जंग के कलर के लाल से रंग के अगर धब्बे आ रहे हैं
1: जी,
0: और वो एक स्पॉट दिखता है और फिर धीरे धीरे वो सब जगह दिखने लगता है, तो अगर जिंक की कमी वहाँ पे दिख रही है और इसके लक्षण जो है वो नई पत्ती पुरानी पत्ती सब पे आते हैं, इसकी खास पहचान है, तो उसके लिए आप जिंक सल्फेट का भी स्प्रे कर सकते हैं या जो EDTA चिलेटेड जिंक आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाइब्रिड धान किसान भाई ने लगाई है तो उसमें एक फॉल्स स्मट नामक बीमारी आती है, जैसे ही बालियां निकलना प्रारंभ होती हैं बालियों में पीले पीले से फूली सी जगह दिखती है और उसको बाद में वो काला पाउडर उसमें रहता है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, तो हाइब्रिड धान में ज्यादा आती है ये। तो जिन किसान भाइयों ने संकर धान बोई है उनको ध्यान रखना है कि बालियां निकलते समय अगर वो पीला पीला सा बालियों में कुछ निशान दिख रहा है तो वो फॉल्स स्मट हो सकता है, उसके लिए आप उन पौधों को तोड़ के अलग करें और वहां पर प्रोपीकोनाजोल फफूंदनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों पे धब्बे ब्लास्ट की वजह से भी आते हैं धान में, राइस ब्लास्ट जो होता है ये फफूंदनाशक बीमारी है। पत्तियों में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक, इनके सिम्टम भी आते हैं, तो आप पहले तो पहचान करें उनकी, और पहचान करने के बाद फिर वहां पे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का मिक्स कॉम्बिनेशन आजकल बाजार में आ रहा है
1: जी,
0: उसका हम छिड़काव कर सकते हैं जिससे हमारी धान में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। अगर किसी प्रकार के रोग की संभावना दिख रही है धान में तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग रोक दें, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग ना करें, यूरिया डालने से फिर वो समस्या बढ़ जाती है, तो इन सब चीजों का ध्यान किसान भाई करेंगे और समय रहते फफूंदनाशी डालेंगे तो निश्चित रूप से बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, ये मौसम में कई प्रकार की सब्जियां भी अपने किसान भैया ने लगाऊ थे, तो उनमें कौन कौन सी बीमारियां और कीटों को प्रकोप होते हैं ये बारे में भी हमारे किसान भैयारों को बताएं और उनको नियंत्रण भी कैसे करें ये बारे में भी जानकारी देवें।
0: हाँ, हमारे सागर और सागर के आसपास टमाटर की खेती बहुत होती है, टमाटर में जो हमारा टमाटर की प्लांटिंग किसान भाइयों ने जून में जुलाई में की है अब वो फलन शुरू हो गया और मतलब अगस्त और सितंबर के महीने में सेप्टेरिया लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट या बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ये मिक्स सिम्टम उसमें दिखते हैं अलग अलग तरह के, और धीरे धीरे सितंबर में क्या होता है जैसी थोड़ी सी ठंडक शुरू होती है तो पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, टेम्परेचर कम होता है तो अल्टरनेरिया का अटैक बढ़ता है, तो पिछले वर्षों में भी ये समस्या आई है, तो किसान भाई लगातार ये ध्यान रखें कि किसी भी तरह के सिम्टम अगर दिख रहे हैं तो आप वहां पे कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरोथेलोनिल, थियोफिनेट मिथाइल, आपका टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, इनका 8 से 10 दिन के अंतर पे अल्टरनेट छिड़काव करते रहें, क्योंकि बरसात के मौसम में तापमान और आर्द्रता इतनी उपयुक्त रहती है कि फसलों की बढ़वार तो अच्छी होती है रोग भी उसी क्रम में बढ़ते हैं, तो ये जो मैंने फफूंदनाशी बताए हैं ये बहुत सस्ते और अच्छे फफूंदनाशी है, इनका हम 8 से 10 दिन अंतर पे लगातार स्प्रे करते रहेंगे तो पत्तों पे कोई सिम्टम दिखाई नहीं देंगे, जब पत्तियों पे सिम्टम नहीं दिखाएंगे तो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा कुछ किसान भाइयों ने हल्दी लगाई है, कुछ ने अदरक लगाया है
1: जी,
0: वहां पे भी पानी के निकासी की प्रॉपर व्यवस्था रखें, ज्यादा पानी भर ना पाए नहीं तो वहां पे गलन की समस्या आती है, तो इसका हमको ध्यान रखना है। मिर्च में लीफ कर्ल या बैगन में भी लीफ कर्ल की समस्या आती है, ये विषाणु जनित बीमारियां हैं जो मच्छर के द्वारा सफ़ेद मक्खी या माहू के द्वारा फैलती है, तो हमको कीट नियंत्रण वहाँ पे पीले रंग के चिपचिपे परपंच, नीले रंग के चिपचिपे परपंच लगाने हैं, नीम का तेल, नीमास्त्र इनका उपयोग करना है या जैविक कीटनाशी जो हमारा वर्टिसिलियम लैकिनी आता है उसका स्प्रे करना है और बाद में फिर हमको कीटनाशी का छिड़काव करना है, पहले दिन से ही हमको कीटनाशी का छिड़काव नहीं, वो टमाटर में भी प्रॉब्लम आती है, मिर्च में तो खास समस्या आती है, तो सब्जियों में हमको IPM पद्धति का ध्यान रखना है, चिपचिपे परपंच लगाएं, फेरोमोन परपंच लगाएं, नीम के तेल का छिड़काव करें, नीम आधारित कीटनाशी का छिड़काव करें, नीमास्त घर में तैयार करके उसका स्प्रे करें, तो इससे हम कीटों को नियंत्रित करेंगे, उनके सुरक्षात्मक उपाय करेंगे और जब आपका नुकसान ऐसा लगे कि अब

0: समस्या बढ़ रही है तो फिर हम वहाँ पे कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। तो कीटनाशी छिड़काव करने में हमको ये ध्यान रखना है कि पहले फलों को तोड़ लें जो बाजार में जाने लायक हैं, या अगले 2-3 दिन तक बाजार में जा सकते हैं उनको तोड़ लें, और इसके बाद हम कीटनाशी का छिड़काव करें जिससे हमारा मानव जीवन या पशु जो भी उसको उपयोग में लाते हैं वो सुरक्षित रहे।
1: जी डॉक्टर साहब, खरीफ फसलों में कई प्रकार के कीट भी लगे थे, वे नुकसान पहुंचाए थे फसल के लाने, तो इनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भैया आ रहे हैं, इनको नियंत्रण कैसे करें?
0: खरीफ फसलों में मुख्य रूप से 2 तरह के कीड़े देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसे जो रस चूसक हैं, जो पौधे की पत्तियों का सेल सैप रस चूसते हैं जिससे पौधा कमजोर हो जाता है, और साथ ही साथ विषाणु जनित बीमारियां जैसे टमाटर में, मिर्च में लीफ कर्ल है, सोयाबीन में, उड़द में पीला मोजेक है, इस बीमारियों को फैलाते हैं। तो इन सब्जियों में खास तौर से हम पीले रंग के चिपचिपे परपंच और नीले रंग के चिपचिपे परपंच 10-10 फीट की दूरी पे लगभग 150 प्रति हेक्टेयर के मान से हम लगाएं, और उनके नियंत्रण के लिए शुरुआत में हम नीम आधारित कीटनाशी, नीमास्त, वर्टिसिलियम लैकनी इनका स्प्रे करें, और बाद में हम जो हमारे सर्वांगी कीटनाशी हैं जैसे इमीडाक्लोप्रिड है, एसीटामीप्रिड है, थायमेथोक्सेम है, या पूर्व मिश्रित कीटनाशी फिप्रोनिल प्लस इमीडाक्लोप्रिड है, इसका छिड़काव करें। दूसरे प्रकार के कीट ऐसे हैं जो पत्तियों को खाते हैं, और पत्तियों के खाने के साथ साथ जब बाद में फूल आते हैं सोयाबीन में, उड़द में या अन्य चीज़ों में, टमाटर में, फिर फल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे कीटों के नियंत्रण के लिए सबसे पहले निगरानी जरूरी है। निगरानी के लिए हम 4-5 फेरोमैन प्रपंच अलग अलग कीट के अलग अलग आते हैं, उनको खेत में लगाएं जिससे जब वो ट्रैप होने लगे, उसमें पकड़ने लगे, तो उनकी संख्या के आधार पर हम नियंत्रण के उपाय करें। दूसरा, इसमें भी हम नीम आधारित कीटनाशी, नीम का तेल, नीमास्त्र, 10 पर्णी अर्क इनका उपयोग करें। लहसुन और मिर्च का घोल, 1 किलोग्राम लहसुन, 1 किलोग्राम लाल मिर्च, दोनों को पीस के 200 लीटर पानी में घोलें और उसको छान के हम 1.5 एकड़ जगह में लगभग स्प्रे कर सकते हैं। तो ये छोटी इल्ली नियंत्रण के लिए बहुत अच्छी उपाय है। और बाद में प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, रेनेक्सीपायर, इमामेक्टिन बेंजुएट या इमामेक्टिन प्लस प्रोफेनोफास, ये पूर्व मिश्रित कीटनाशी है, इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। तो जितनी भी इल्लियां हैं अलग अलग फसलों में वो हमारी खत्म हो जाएंगी। अगर मान लीजिए टमाटर या ऐसी कोई सब्जी है जिसमें इल्लियों का अटैक ज्यादा आता है, कोई फसल ऐसी है, तो उसमें हम एक छिड़काव करने के बाद 8-10 दिन बाद दोबारा छिड़काव कर दें, लेकिन कीटनाशी हमको बदल देना है। अगर मान लीजिए पहले हमने इमामेक्टिन बेंजुएट का स्प्रे किया, तो दूसरा छिड़काव फिर हम रेनेक्सीपायर का कर देंगे। तो इस तरह से आपको अगर दूसरे छिड़काव की आवश्यकता पड़ती है तो आप कीटनाशी बदल सकते हैं। तो ये सारे उपाय हम करेंगे तो कीट नियंत्रण हमारा बहुत प्रभावी तरीके से होगा और फसलों का उत्पादन अच्छे से प्राप्त हो जाएगा।
1: तो डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भैया बिन्नाहरों के लाने खरीफ फसलों में रोग कीट नियंत्रण के बारे में इतनी उम्दा जानकारी दी, एक ही लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखो भैया रो, कितनी बढ़िया जानकारी सुनी खरीफ फसलों में रोग कीट नियंत्रण, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी और इनसे बातचीत कर रहे थे अपने रज्जू भैया। तो भैया रो, कितनी बढ़िया सी जानकारी आप उन्होंने सुनी। अगर भैया रो आप और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर खेती बाड़ी को काम करत हो तो बहुत सी समस्याओं से बचे रहे हो। तो हमें आशा है कि आप औरों को जा जानकारी जरूर पसंद आई हुए और जा जानकारी सुन के जरूर लाभ ले हो। और अब सुनवा रहे हैं कछुजे संदेश।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो को पहचान और

0: खाते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेशों के बाद हमारे सभी किसान भैया बहनों को एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत है और सुनवा रहे हैं एक लोकगीत, भगवान सिंह ठाकुर को गाओ भाऊ।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके

0: लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: तो भैया देखो, जैसे कि बरसात को मौसम किसान भैया हरों के लाने और अपनी खेती बाड़ी के लाने कितनों जरूरी होते हैं, और अपनों जो पशुधन रहते हैं, सो जैसे अपन खेती बाड़ी की देखभाल खूब ही करते हो, वैसा ही बरसात के मौसम में अपने पशुधन की भी देखभाल बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। काहे कि बरसात के दिनों में चारों तरफ खूब कीचड़ सो हो जाते हैं, नमी हो जाते हैं, ऐसे में जो अपने गाय भैंस हैं, बकरियाँ हैं, कोनों भी अपन जो भी पशु पालत है उनके लाने बीमारियां परेशान करन लगती हैं। काहे कि जब जो पानी रहते हैं, चारा रहते हैं, वो गीलो हो जाते हैं, सुबह जब खाऊत हैं सो उन्हें ऐसी लगन लगा थे कि जैसे अफरा सो, काहे कि इतनो हरो हरो चारा जैसे भी खा लेते हैं सो अफरा जैसे लगन लगा थे। इसके अलावा भैया रो उनके जो पाँव होते हैं, खुर होते हैं, उनमें भी कीचड़ जमा हो जाते हैं। अब उनकी अगर अपन देखभाल नहीं करते हैं, वो कीचड़ को साफ नहीं करते हैं, तो खुरों में परेशानी होने लगा थे उनके, और ऐसे में अपनों पशुधन बीमार हो सका थे। तो सबसे पहली बात तो यही आउत है कि अपने जो पशुधन अपन जहाँ बांधते हैं उनकी खूब देख रेख करें, जहाँ पे उनके बांधते हैं अपन सोते उस जगह की खूब साफ सफाई रखें, बरसात को पानी होते घुसन ना देवें, अगर कीचड़ हो जावे तो खूब साफ कर देवें। इसके अलावा भैया जो जो हरो चारा है उनको खूब ही ना खान देवे, अपने पशुधन को अपन को ध्यान रखने हैं। ई मौसम में खूब ही मक्खी मच्छर भी होते हैं, तो उनसे भी अपन को अपने पशुधन को बचाने हैं। वो जैसे उस जगह पे जहाँ पे अपने पशुधन बंधत है उस जगह पे अपन को नीम को धुआं करने हैं, तो नीम के धुआं से का होते हैं कि जो मक्खी मच्छर हैं वे भग जाते हैं और अपने पशु को आराम मिल जाते हैं। सबसे जरूरी बात जा रहे थे कि अपनों जो पशु है उनको अच्छो पानी, साफ पानी पिलाने हैं। ऐसा नहीं कि जो बहुत ही दिनों को नाद में भरो है सो वही पानी पिलाए पड़े हैं, काहे कि बरसात के पानी के कारण नाद तो भरी ही रहते, तो नाद को खाली करत रहे। और एक बात और ध्यान में रखें कि जो नाद है उनको चूना से पोत देवे, जिसे काई वगैरह जल्दी नहीं जमाते हुए और पानी भी साफ सुथरू अपन को दिखाते। तो जी कछु बातें हैं भैया रो, इनको बातों को अपन ध्यान में रखते हैं तो अपनों पशु स्वस्थ रहते। सड़ो गलो खाना पीना उनको ना देवे, जैसे कहूँ कहूँ बहुत सो सब्जियाँ सड़ जाती हैं और अपन अपने पशुओं के लाने डार देते, तो ये सब चीज़ों को अपन को ध्यान रखने हैं। और भैया बहनों, अब रिया हो गई है मंडी मौसम की जानकारी की। तो गेहूं रहो है 2395 से 2790 रुपये प्रति क्विंटल, चना रहो है 2005 से 6150 रुपये प्रति क्विंटल, बटरी रही 3210 से 4100 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन 3500 से 6900 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का 1900 से 1900, मटर रही 3840 से 3840 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 2100 से 8500 रुपये प्रति क्विंटल, और सरसों रहो 6700 से 7750 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये तो हती मंडी के भाव, और अब हम जानकारी दे देवे मौसम की। तो उच्चतम तापमान रहो 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहो 22.1 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता सवेरी की रही 98% और संजा विरिया की रही 82%। तो जा तो रही मंडी और मौसम की जानकारी, और अब देखो भैया रो घड़ी की तरफ हो रही है चलबे की बिरिया, तो आज्ञा दो, राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजने को हैं, बस कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे और आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीत संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत ये गीत आप सुन रहे हैं सलामे इश्क फिल्म से अदनान सामी की आवाज़ में। शब्द रचना समीर की है, संगीत है शंकर एहसान लोय का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में समय को ध्यान में रखते हुए अंतिम गीत, ये है फिल्म फन्ने खां से। सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाज़ है, इरशाद कामिल की शब्द रचना है और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में पहली गजल आपको सुनवा रहे हैं साबिर खान और अरुणा कुंदनानी की आवाज में। शब्द रचना वाली असी की है, संगीत है आलोक नाथ डे का।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए एल्बम हम सफर से नीना और राजेंद्र मेहता की आवाज में ये गजल। प्रेम वर्बतोनी ने इस गजल को लिखा है, संगीत है गोविंद प्रसाद का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अब सुनिए ये गैर फिल्मी गीत। गायक, कलाकार और संगीतकार हैं अनूप जलोटा। शब्द रचना है राज अलाहाबादी की।

श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत अब आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें। सईद राही की शब्द रचना है, संगीत निर्देशन जगजीत सिंह का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में एक और गैर फिल्मी गीत हम शामिल कर रहे हैं। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये गैर फिल्मी गीत है। बेकल उत्साही की शब्द रचना है।

श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 MHz पर। और अब से कुछ ही देर के बाद यानी 8:45 से समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तब तक आप आनंद लें इस गैर फिल्मी गीत का।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए

0: पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पट्टिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
2: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
1: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
4: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान

0: उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जल भराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में

0: बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
1: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत की टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी ने रेडियो ट्यून इन कर लिया होगा। वॉल्यूम भी अपनी पसंद के मुताबिक सेट कर ही लिया होगा, क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपका अपना कार्यक्रम मन चाहे गीत। जी हाँ, 9 बज चुके हैं। शायद आप कार में सफर कर रहे हों, घर पहुंचकर आराम कर रहे हों, छत पर टहल रहे हों, या अपनों के साथ बैठे हों, और हम हैं अब आपके साथ आपकी पसंद के गीतों के जरिए आपके

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था लव स्टोरी। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी की शब्द रचना थी, संगीत था राहुल देव बर्मन का। और सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता, SMS भेजे आप सभी ने व्हाट्सएप पर भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता, संजय और किट्टू। संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल साहनी जालंधर से। और मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। सागर से एक पत्र हमें मिला है, पुट्टीलाल विश्वकर्मा, लक्ष्मी शंकर विश्वकर्मा, प्रकाश पटेल, मनोरंजन रायकवार, मोहित विश्वकर्मा, रोहित विश्वकर्मा। आप सभी ने पंत नगर वार्ड सागर मध्य प्रदेश से पत्र भेजा है। कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फरमाइशकर्ताओं के नाम पहले आपसे साझा कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही, सरिता गवाणकर, प्रिंस और एकांश गवाणकर। मुंबई बदलापुर से सिद्धांत, प्रणिता और टुकटुक। नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और ध्वनि गवाणकर। पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। और नेपानगर से सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का ये गीत। इस फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।

श्रोताओं, कार्यक्रम मनचाहे गीत के अंतर्गत अब अगली फरमाइश पूरी कर रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत है। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है, संगीत राजेश रोशन का है, फिल्म का नाम है जुर्म। पहले सुन लेते हैं गीत, गीत के उस पार फरमाइश कर्ताओं के नाम जानेंगे।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जुर्म। और इस गीत को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं हमें, बीड शहर से किसन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल, चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर सागर से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग पलारी से, पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ और साइना निवान, खंडवा से अब्दुल गफार, अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है रॉकी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, संगीत आर डी बर्मन का है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा शिवांशु, यश अवधेश सक्सेना, रामदास, रमाकांत दुबे, रमेश, सुजीत और प्रमोद सैनी। व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजा है आप सभी ने, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा खरगोन मध्य प्रदेश से, इन्हीं के साथ अभिषेक, डॉक्टर अमित, आरोही, अंजलि, हितेंद्र दास ने एसएमएस भेजा है असम से, जबलपुर से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और गुड़िया और वेदा, एक और एसएमएस हमें मिला है आप सभी का, सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं रॉकी फिल्म से ये गीत।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम मनचाहे गीत को अब हम संपन्न कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया आपके रेडियो साथी अदिति के साथ। कार्यक्रम से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 MHz पर रात के 9:30 होने को है। बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: विविध भारती
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

0: कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए।
1: दूर से

आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954, अचानक कल्याण जी वीरजी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा

1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊँगा। तो हमने सोचा कि ये उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

0: चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।
1: हम थे।

समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं एक गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को आप करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज़।

कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे। ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिल के लुट जाने का इजहार हो ये जरूरी तो नहीं, ये तमाशा सरे बाजार हो ये जरूरी तो नहीं। मैं तुझे टूट कर चाहूं तो मेरी तरफ से, तू भी हो मेरा तलबगार ये जरूरी तो नहीं। ऐ सितमगर जरा झांक कर मेरी आंखों में देख, जुबा से हो प्यार का इजहार ये जरूरी तो नहीं। मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है, जिस्म से हो कोई सरोकार ये जरूरी तो नहीं।

तुम्हारी खातिर चलो ये माना मैं सब करूंगी, तुम्हारे सारे हुक्म सुनूंगी, मगर बताओ ना तुम ये कर सकोगे? किसी हसीना को राह चलते नहीं तकोगे, कोई पुरानी पड़ोसन मिले कहीं तो नहीं रुकोगे? मेरी सांसें, मेरी नींदें, मेरे इरादे सब तुम्हारे, मगर बताओ तुम्हारे दिन रात की लगन में मैं किस कदर हिस्सेदार ठहरी? तुम्हारी सांसें, तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी ख्वाहिश में मैं कहाँ हूँ? ये जिंदगी में जो अबतरी है, ये तुम्हारा काम सारा जो दफ्तरी है, जो महीना चाहत का फरवरी है, क्या मुझको इन सब पे बरतरी है? या सारे जज्बात ये प्यार तुम्हारा है सब हकीकत या सरसरी?

बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था। हवा के हल्के झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो। एहसास तुम्हारे जैसा था। मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर्द सा एहसास हुआ, वो एहसास तुम्हारे जैसा था। तन्हा मैं चली फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया, मैं समझी तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, रही ना बाकी आहट भी, मैं समझी तुम मुझे छोड़ गए, अंदाज तुम्हारे जैसा था।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। आओ हम तुमको बताएं मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी को देखते ही धड़कनों में सुर बिखर जाएं, चमक आंखों की बढ़ जाए, किसी की याद में शामो सहर का फर्क मिट जाए, सुलगती रात कट जाए, तस्वुर से किसी की चांदनी रातें महक उठे, किसी के बिन जब सब कुछ अधूरा हो, ना सूरज में तपिश बाकी रहे ना चांद पूरा हो, ठहर जाए जो उस रुखे रोशन पर, पलट ना भूल जाए दिल, किसी की दीद की खातिर जबी सजदे में झुक जाए, नजर जब आए तो बेसाख्ता कह दे जुबां, ऐ काश मौला

कोई खुशबू हो, गुल हो या कोई रंगहीना हो तो, कड़कती धूप में कोई अब्र या साया घना हो तो, किसी का साथ अपनी इब्तिदा वो इंतहा हो तो, कोई खुद दर्द हो, हम दर्द हो और खुद दवा भी हो, किसी का हाथ जब अपने लिए दस्ते शिफा भी हो, फिर ऐसे में ये सब एहसास सारी कैफियतें और सिलसिले मिलकर अनोखी शय बनाते हैं, जिसे कहते भी हैं, सुनते भी हैं और सब सुनाते हैं, मोहब्बत जिसको कहते हैं।

सुनो जाने जा, अगस्त में तुम्हारी यादें दिल को चीर जाती हैं। ठंडी हवा से ना आशना शामें, सितारों से भरी रातें के जिनमें नींद की देवी भी उगताई सी लगती है। इसी बेकैफ मंजर में अचानक नीला आसमां बादलों की चादर ओढ़ लेता है। फिर ऐसे सावन बरसता है कि मंजर झूम उठता है। वही मौसम, वही रुत ओढ़े हुए दिन की बरसती शाम में जब हम तुम फिजा की गुनगुनाहट रूह में महसूस करते थे। कभी बूंदे पकड़ते, कभी यूं मुस्कुराते थे कि जैसे कानों में बरसात ने कोई बात कह दी हो। वही मौसम, वही रुत, वही दिन रात है, फिजा भी गुनगुनाती है। न जाने तुम कहाँ पर हो, अब चले भी आओ, तुम्हें ये बारिश बुलाती है।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है इससे क्या बन

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: ये विविध भारती। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।

0: डोमेस्टिक मार्केट।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्त तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
2: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representative talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representative talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jia said Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. India has stressed the need for diversified, adequate, predictable and sustained international financing to support land restoration and strengthen resilience to drought. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav said this in Ulaanbaatar, Mongolia today.